ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 110.7 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और

0: उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे यहाँ से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अभी थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनिए चिंतन। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना होगा सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनिए सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर। सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरित मानस गान, इसमें आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 9। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शुरू होगा सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के बारे में। इसमें एक भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी जिसका विषय है भेंट फोटोग्राफी तब और अब, फोटो जर्नलिस्ट गिरधारीलाल सैनी से कुंज बिहारी की बातचीत। समाचार प्रभात होगा सुबह 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण किया जाएगा 8 बजकर 15 मिनट से। पर आप सुनिए कार्यक्रम सुर संगम, हिंदी में समाचार, हिंदी में प्रादेशिक समाचार आपके लिए होंगे सुबह 9 बजे। 9 बजकर 10 मिनट पर आप सुनिए देश गान। सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम मरुवाणी।

कार्यक्रम दिल से दिल तक होगा सुबह 9:30 बजे 10 बजे आप सुनिए मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन में 12 बजे से। 12:30 पर आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार होंगे लक्ष्मण सिंह आजाद एंड पार्टी। महिलाओं के लिए हुआ कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2 बजे से। 2:15 पर आप सुनिए दोपहर समाचार। दिन में 2:30 पर आप सुनिए तराने नए पुराने। 3 बजे हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन होगा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 4 बजे कार्यक्रम संदेश 2 सोल्जर्स के साथ। 5 बजे आप सुन सकते हैं युवा साथियों का अपना कार्यक्रम जुपवाणी। कार्यक्रम विवरण होगा 5:55 पर। 6 बजे आप सुनिए दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनिए 6:10 पर। 6:20 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से रिले किए जाएंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसानवाणी 7:00 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बाजरे की उन्नत खेती कैसे करें, इस पर भी चर्चा होगी।

शाम 7:30 पर और रात्रि 9:15 पर सुनी राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता होगा रात्रि 8 बजे से। समाचार संध्या का अंक होगा रात्रि 8:45 पर। 9 बजे आप सुनिए News@9। रात्रि 9:30 बजे आप सुनिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम कंट्री वाइड। 10 बजे आप सुन सकते हैं जयपुर से प्रांतीय नाटक। 10:30 पर सुनिए सुगम संगीत। सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। श्रोताओं, चिंतन में आप सभी का स्वागत। बात करते हैं सकारात्मकता पर। श्रोताओं, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। विचार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छे या सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में अंधेरा लाते हैं। अच्छे विचार हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे विचारों की शक्ति हमें अपनी ऊर्जा में सही उपयोग में सहायता करती है। सकारात्मक मानसिकता हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने की शक्ति देती है। दुनिया में सफल लोगों ने सकारात्मकता को ही सफलता की कुंजी माना है। अच्छे विचारों की शक्ति हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बदलने में सक्षम है। यह अच्छे विचारों की सोच की शक्ति है कि मनुष्य जो सोचता है उसे प्राप्त कर लेता है और उसके लिए वह अपना सर्वस्व लगा देता है।

स्वतः सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समस्याओं से नहीं घबराता, वह हर छोटी या बड़ी समस्या का भी कोई ना कोई हल अवश्य खोज ही लेता है। सकारात्मक दृष्टिकोण समाधान की पहली सीढ़ी है। हमें कोई समस्या परेशान करती है तो पहले अपने दिल की सुने, फिर आगे बढ़ें और स्वयं को पूरी तरह उस समस्या के लिए समर्पित कर दें। प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करें, इसके उपरांत समस्या को हल करें। श्रोताओं, अब तक हुए प्रत्येक आविष्कार सफलता से पहले असफलताओं के कई पड़ावों से गुजरी एक ऐसी कहानी है जिसे हम सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। असफलताओं ने आविष्कारों और उत्साह और दृढ़ता पर आघात नहीं किया, क्योंकि उन्हें सकारात्मकता की शक्ति से समाधान ढूंढ लिया। इस प्रकार एक नया आविष्कार हुआ और ऐसे आविष्कार हमारा जीवन सहज और अच्छा बनाते हैं।

श्रोता, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं, भावनाओं का क्षेत्र ऐसा होता है जिस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है होती है, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं जीवन के लिए थोड़ी बहुत होनी चाहिए, मगर उन्हें अपने जीवन पर कभी हावी नहीं होना देना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिससे सकारात्मक भावनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इससे रक्तचाप कम होता है, रक्त शर्करा का स्तर बेहतर होता है और स्वस्थ वजन जैसे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं।

श्रोताओं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के तरीकों के में जीवन के बारे में, उन पहलुओं के बारे में अच्छे विचार रखना शामिल है जो अपने आप नकारात्मकता को जन्म देते हैं, जैसे काम या रिश्ते अधिक हंसना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और अपने बारे में अधिक सोचना और आगे बढ़ना अच्छे विचारों की, सकारात्मक विचारों की निशानी है।

इसलिए श्रोताओं, जब भी आप सोचें, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, तो हमारे सभी काम हैं जो आसानी से होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे।

हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना, कलाकार अनूप जलोटा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार। सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। गीतकार नीरज, संगीतकार SD बर्मन।

आइए सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत। आवाज कमलेश अवस्थी की है, गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आइए अब सुनते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार जयदेव।

प्रेम पर्वत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार जयदेव। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है दीदार यार।

चुनाव के कारणों से आपको निर्धारित गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, आइए सुनते हैं। मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है दो कलियां, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत बाहर अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 9, कलाकार सुरेश वाडकर, संगीत सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। इसमें आज आपने सुना एपिसोड नंबर 9। कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत था सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

कार्यक्रम नमस्कार चुरू में आप सभी का स्वागत। इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे माँ है बच्चों की प्रथम पाठशाला। एक और चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के बारे में। अलावा इसके आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय फोटोग्राफी तब और अब। फोटो जर्नलिस्ट गिरधारीलाल सैनी से कुंजी बिहारी बिरमीवाला की बातचीत।

श्रोताओं, तो माँ एक ऐसे शख्स को दिया गया शब्द है जो जीवन भर अपने परिवार, बच्चों की भलाई, विकास और कल्याण के लिए बलिदान और अपनी पहली प्राथमिकता देता है। एक माँ न केवल अपने बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उससे प्यार करने, उसकी देखभाल करने और बिना किसी पूर्व अपेक्षा या शर्तों के समर्पण और प्यार दिखाने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता रखती है। एक माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह एक रक्षक, एक मित्र और साथ ही एक अनुशासक की भूमिका निभाती है। वह एक निस्वार्थ प्यार करने वाली इंसान होती है, इसलिए माँ का दर्जा हम सब के लिए सबसे ऊंचा होता है।

श्रोताओं, यह सबको पता है कि एक स्त्री अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहू जैसे न जाने कितने रिश्तों को निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वह है माँ का रिश्ता। मातृत्व ऐसा बंधन है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। माँ अपने बच्चे को जन्म देने के साथ ही उसके पालन लालन पालन का भी कार्य करती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक माँ का उसके बच्चे के प्रति स्नेह कभी खत्म नहीं होता। वह खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों के सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहती है। इसलिए माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक बनाया गया है और प्रतीक माना भी गया है। साथियों, एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने का साहस रखती है। एक माँ स्वयं चाहे कितने भी कष्ट है लेकिन अपने बच्चे पर किसी तरह की आंच नहीं आने देती। इन्हीं कारणों से माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है। इसलिए एक कहावत भी काफी लोकप्रिय है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया।

और श्रोताओं, माँ बच्चे की पहली पाठशाला है। यह एक गहरा और शाश्वत सत्य है। इसका अर्थ है कि बच्चे का सबसे पहला अनौपचारिक स्कूल उसका घर होता है और उसकी माँ ही उसकी पहली शिक्षिका गुरु होती है। बच्चा दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले अपनी माँ से ही प्यार, अनुशासन, भाषा और बुनियादी संस्कार सीखता है और आगे बढ़ता है।

बच्चा अपनी माँ के हाव भाव, बोली और बातचीत के तरीके को देखकर ही बोलना और दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है। माँ के आंचल में बच्चे को जो भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, वह उसे एक साहसी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाती है।

श्रोताओं, सच बोलना, बड़ों का आदर करना, दयालुता और छोटी छोटी बातें आदतें माँ बच्चे में अनायासी डाल देती है। परिवार और समाज में कैसे रहना है, इसका पहला व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को अपनी माँ की गोद से ही मिलता है। बच्चों के मन में उठने वाले हजारों सवालों का सबसे पहला सटीक और जवाब माँ ही देती है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता का विकास होता है। चलने से लेकर अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे काम खुद करना, बच्चा अपनी माँ के प्रोत्साहन से ही सीखता है।

साथियों, माँ अपने बच्चे को जैसी सीख देती है, बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए माताओं का भी कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा व संस्कार दे ताकि बच्चे भविष्य में एक सभ्य नागरिक बन सकें। माँ का कर्तव्य है कि वह अपने छोटे बच्चों को उचित खान पान, पहनावे, शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। इसके साथ ही किशोरा व बच्चों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोर उम्र पार पर पहुँचते ही बच्चों की कई तरह की स्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए माँ ही ऐसा माध्यम है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके।

0: और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है फोटोग्राफी तब और अब। फोटो जर्नलिस्ट गिरधारीलाल सैनी से कुंज बिहारी बिरमीवाला की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस खास एक चर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर हम किसी भी समाचार पत्र में या किसी स्टूडियो में एक ऐसे फोटो को देखते हैं जो हमारे मन को भाता है। उस फोटो को हम बार बार देखना चाहते हैं, एक तरह से वो क्लासिकल या एक यूनिक फोटोग्राफी भी मानी जाती है। उस फोटो को देखने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि इस फोटो को किसने अपने कैमरे से लिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाया, उसमें अपनी पूरी उम्र बिता दी, उसके लिए वो फोटोग्राफी उनका काम न होकर एक पूजा की तरह है। ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर हम अपने शहर में देखते हैं जिन्होंने फोटोग्राफी की बदौलत अपना नाम कमाया है, और कई ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जिनकी पीढ़ियां इसमें काम कर रही, खुद ने काम किया और अब उनके परिवार के सदस्य, उनके बेटे हैं, भाई है, वो भी काम कर रही हैं। ऐसे ही फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी सैनी हमारे साथ हैं। गिरधारी जी आज स्टूडियो में आए हैं आकाशवाणी चूरू के। गिरधारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: गिरधारी जी, जो फोटोग्राफी हम अक्सर आपकी देखते रहते हैं समाचार पत्रों में, विभिन्न अन्य संसाधनों पर, ये जो फोटोग्राफी का काम है, आपने किस साल में सीखा और इसकी जो फोटोग्राफी लाइन में आने का क्या कारण रहा?
2: ये फोटोग्राफी की शुरुआत मैंने रत्ननगर में, मेरे एक मित्र थे राजकुमार जी तंवर, तो वो ये फोटोग्राफी का काम करते थे, मैं उनके पास बैठता था, तो वहां से मैंने उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो घूमना फिरना है, लोगों से मिलना जुलना है, उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली कि यार ये फोटोग्राफी की इतनी इज्जत है इस आदमी की,

0: तो मैंने उनसे वो काम सीखना शुरू किया था और वो निरंतर मेरा आज तक जारी है।
1: सबसे पहले आपके गुरु वो रहे जिनके साथ रहकर आपने फोटो की बारीकी सीखी, तो एक वो दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट एक नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो बनते थे और आज आप मोबाइल में तुरंत अपने फोटो देख सकते हैं या फिर कैमरे में डिजिटल कैमरे में देख सकते हैं, तो ये जो सफर तय किया है इसको क्या मानते हैं आप?
0: वो दौर में आज के दौर में बहुत अंतर है। उस दौर में फोटोग्राफर की इतनी क्रेडिट थी और इतने लोग इज्जत करते थे कि अपने घर में जो मेहमान है ना उनसे भी ज्यादा इज्जत फोटोग्राफर की होती थी। और आज जो ये डिजिटल युग आ गया, मोबाइल का युग आ गया है, इसने क्या है कहीं ना कहीं फोटोग्राफर के व्यवसाय को, और वैसे ये समझा जाए कि इसमें प्रवाहित हुआ है काम। लेकिन जो आदमी जो मेहनत करता है तो उसके और जो मोबाइल के काम में है वो काफी अंतर है। आज एक फोटो जर्नलिस्ट है या एक फोटोग्राफर है जो व्यवसायिक फोटोग्राफर है उसके एंगल में और मोबाइल में काम करने वाले एंगल में लाख हाथ का अंतर है। एंगल में एक्सपोजिंग के अंदर है, उसको क्या है तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। और जो आदमी मोबाइल से काम करने वाला है उसका वो पैसा नहीं है तो उसका उसमें दिमाग नहीं काम करता है।
1: बरसों से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र क्या है?
0: मेरी उम्र अभी 65 साल हो गई।
1: 65 साल हो गई और आप एक लंबा सफर इसके लिए तय किया है, तो क्या मानते हैं कि ऐसा क्या गुण, ऐसी कौन सी कला सबसे पहले उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो एक फोटोग्राफर बन सके?
0: मर्दुभाषी जरूरी है इसमें।
1: सबसे पहले ये है
0: मर्दुभाषी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और आदमी को हसमुख होना चाहिए।
1: आजकल गिरधारी जी सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा है, तो आपका उस वक्त का जो एक कैमरे की फोटोग्राफी का दौर था, आज भी आप कैमरे से ही फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मोबाइल की फोटोग्राफी और कैमरे की फोटोग्राफी में किस प्रकार से आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है? एक जो आपका कस्टमर आता है या जिसने आपसे फोटो खिंचवाई है तो वो क्या कंपैरिजन करता है कुछ इस रेट का है आपका?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कंपैरिजन है, करते हैं, कंपैरिजन भी होता है। आजकल तो लोग इतने एडवांस हो गए कि वो जब काम कराने के लिए आते हैं तो वो कैमरे के मॉडल तक पूछने लगे, आप कौन से कैमरे के मॉडल से फोटोग्राफी करोगे?
1: इतना बदलाव आ गया
0: उस टाइम में और हमारे टाइम में बहुत अंतर है।
1: तो इसके लिए तो आपको बहुत सारे तरह के कैमरे अलग अलग तरीके से,
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समय के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो पीछे जाओगे।
1: पेशे को ही अपनी आत्मा बना लिया है, तो आपके भाई या आपके संतान है उनका क्या इसमें झुकाव रुझान है कुछ?
0: करीब 10-15 साल हो गई, मेरे बच्चों ने मेरे भाई ने संभाल रखा है काम ही।
1: आपने अपना जो पूरा काम करने का तरीका था वो उन तक पहुंचा दिया?
0: मैंने उन तक पहुंचा दिया, और मैं ज्यादा मेरा जो काम है वो मेरा फोटो जर्नलिस्ट का काम है।
1: अच्छा,
0: तो मैं मेरा फोटो जर्नलिस्ट का काम देखता हूँ, वो बच्चे हैं वो फोटो जर्नलिस्ट का काम भी करते हैं और व्यवसाय के भी काम करते हैं
1: जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि धारी जी की कोई ऐसी फोटो जो आपने किसी अखबार के लिए ली हो या अपने स्टूडियो के लिए ली, अपनी यादगार के लिए, वो फोटो जो जिसकी पूरे जिले में चर्चा हुई हो, सब लोगों ने सराहा?
0: पूरे जिले में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा हुई है। सब फोटो भी मैंने मेरे लाइव का महाप्रज्ञ जी जो थे अपने, उनका महाप्रयाण हुआ था सरदार सिंह के अंदर
1: जी।
0: तो उनकी जो अंतिम यात्राओं की जो फोटोग्राफी है वो मैंने वहां 3 दिन रह के की थी
1: जी।
0: और वो एक दैनिक समाचार पत्र में जिसमें मैं काम करता था उसमें छपी थी। तो वो ये मानो कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी पेपर थे उसमें अलग था वो। तो मेरे अखबार वालों ने मेरे को सम्मानित भी किया था, मेरे को वहां से प्रशस्ति पत्र भी मिला था।
1: उस कवरेज के दौरान जो आपने फोटोग्राफी की कला दिखाई और जिसको अखबार में जगह मिली, उसके बाद से एक अलग आपको संतुष्टि मिली?
0: संतुष्टि मैंने ऐसे तो बहुत, मेरे एक्सपोजिंग है बारे में छपी हुई है
1: जी।
0: वो बहुत ऐसे फोटो हैं, एक नहीं है, अनगिनत फोटो हैं, जिस फोटो ने ही आज मेरी जो पहचान है वो मेरा गिरधारी सैनी का जो नाम है ना आज
1: जी,
0: वो उन फोटो की वजह से ही है।
1: सही,
0: मैंने ऐसे ऐसे विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के नहीं, विभिन्न विभिन्न हिस्टोरिकल जो प्लेस है उनकी और मौसम की, इस प्रकार की मैंने फोटो बहुत छापी है।
1: तो आपका जो स्टूडियो है, आपका जो कार्यक्षेत्र, आपका जो दुकान ऑफिस जो भी है, उसमें कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स आज भी मिल जाएं जो आपके?
0: बिल्कुल लगे हैं, हाँ बिल्कुल, मेरे स्टूडियो के अंदर लगा रखे हैं मैंने।
1: जिनमें कुछ बताना चाहेंगे आप, जैसे आपने सदाशयर का एक वाक्य बताया, कुछ और ऐसा हो?
0: कोई एक दो नहीं है जो मैं आपको बता सकूं।
1: कंटिन्यू करते रहते हैं आप?
0: हाँ, कंटिन्यूटी रहती है।
1: फोटो जब आप लेते हैं किसी भी एंगल से, पहले

0: तो पता ही नहीं चलता था फोटोग्राफर को कि उसकी फोटो कैसी आई है, उसको रील पर डिपेंड होना पड़ता
1: है। नहीं नहीं नहीं नहीं, पहले में आदमी ये बहुत अंतर है। उस टाइम में जो फोटोग्राफर है या फोटोजर्नलिस्ट है, इसका कॉन्फिडेंस इतना

0: कि इस दौर तक क्या कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि उस वो कैमरे अलग थे, अब कैमरे अलग हैं, काम करने का तरीका
1: ये
0: अलग।
1: तो समय है ना, समय सब कुछ सिखा देता है आदमी को। अगर समय के साथ अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो इस भागम भाग जी की दो दौड़ है ना, इसमें आप सफल नहीं हो सकते।
0: इधर जी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने लगातार सालों तक फोटोग्राफी की है, अभी भी काम जारी है, कोई ऐसा एक दिन, ऐसी घटना आपको याद आती है कि जिस दिन आपको बहुत कठिनाई महसूस हुई और आपने आपको यूं लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, या उस दिन किसी ऐसी कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा, कोई ऐसा
1: नहीं नहीं नहीं
0: वाकया
1: ऐसी मेरे पास मेरे सामने कभी नहीं हुई।
0: कभी?
1: कठिनाई को मैंने कठिनाई माना ही नहीं। मैंने जो काम आज तक जो काम किया है ना, वो समर्पण भाव से काम किया है।
0: जी
1: जिस भी क्षेत्र में, जिस भी अखबार में मैं काम करता था, तो समर्पित भाव से, रात देखा, दिन देखा, कभी नहीं देखा मैंने। मैंने ये समझो कि रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक काम किया है।
0: कभी आपने कोई धूप छांव
1: नहीं,
0: जिंदा कुछ नहीं किया?
1: तो ये तो इस प्रोफेशन में है ही नहीं।
0: जब रियल टाइम पर आपको वहां मौजूद रहना पड़ता है तो उस चीज के लिए तैयार
1: मतलब
0: भी रहना
1: आज मान
0: पड़ता
1: लो मैं फोटो जर्नलिस्ट का काम करता हूँ, मान लो कहीं आग लग गई तो मैं वहां जाना पड़ेगा, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया वहीं भी जाना पड़ेगा। आज तो मान लो ये मोबाइल का युग आ गया, तो कोई भी अखबार वाला है, कोई भी फोटो जर्नलिस्ट है या कोई भी रिपोर्टर है,
0: है। जी
1: वो फोटो उपलब्ध कराने के लिए किसी को फोन कर सकता है कि यार मेरे को ये फोटो उपलब्ध करवाना। लेकिन वो दौर हमारे वाला था, उसमें तो हमें स्वयं ही जाना पड़ता था।
0: सही बात
1: जिस भी स्थान पे मान लो कुछ घटना हुई है या दुर्घटना हुई है, तो उसमें तो हमें खुद जाना पड़ता था।
0: बहुत अच्छी बात की
1: और
0: दर्जी आपने बताई है। देखिए वो दौर आपने देखा है, टिपिकल दौर था। अब मैं चलते चलते एक ही बात आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें आप अपना भविष्य क्या देखते हैं, और अगर कोई जो व्यक्ति है इसको अपना रोजगार बनाना चाहे तो क्या वो इसमें आ सकता है?
1: जिसको अगर फोटोग्राफी का रोजगार अगर करना है, प्रोफेशनल कैमरा अगर आप लाओगे, तो ये पहले तो क्या है कि छोटी पूंजी में काम कर लेता था आदमी। अब एक तो इसमें क्या है कि आपको एक कैमरे दो कैमरे से आप काम नहीं कर सकते, और हमें हमारे को इतने संसाधनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इसके निरंतर चलते रहे।
0: सही बात है।
1: और आज मान लो मेरे को एक संसाधन की जरूरत है तो मैं प्रोवाइड करवा लेता हूँ, लेकिन जो नया आदमी आएगा वो तो हर संसाधन उसको तो नया लाना पड़ेगा,
0: सही बात है,
1: तो उसको
0: चुनौतीपूर्ण।
1: इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा। ये चुनौतीपूर्ण काम है।
0: जी वाकई गिदारी जी बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जो दौर आपने देखा है फोटोग्राफी का, बदलता हुआ दौर, और उस दौर के बावजूद भी आज आपकी फोटोग्राफी में वही चमक है, वही दमक है, और वही कला हम देखते हैं। बहुत अच्छी वार्ता रही, और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जिन्होंने गिरधारी जी सैनी को अक्सर उनकी फोटो के साथ, नाम के साथ सुना है, पढ़ा है, देखा है, आज वो उनकी बातचीत को सुन रहे हैं। गिरधारी जी आप आए स्टूडियो में, आपने हमसे बातचीत की और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू आपके आकाशवाणी शुरू को।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे एक भेंट वार्ता जिसका विषय था फोटोग्राफी तब और अब। फोटो जर्नलिस्ट गिरधारीलाल सैनी से कुंज बिहारी की, कुंज बिहारी बिरिंबी वाला की बातचीत आपने सुनी।

और अब चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के बारे में। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य और इसको मनाने का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और समाज में नाविकों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान की सराहना करना और उन्हें सम्मान देना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी IMO द्वारा वर्ष 2010 में मनीला में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। विश्व के लगभग 90% व्यापार का संचालन समुद्री मार्ग यानी समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है, जिसमें नाविक रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाते हैं।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोताओं, चलते चलते एक और दिवस के बारे में बात करते हैं। आज है संविधान हत्या दिवस। हर साल 25 जून को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 में इस दिवस को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आपातकाल की क्रूरताओं और लोकतंत्र के दमन की याद दिलाना है। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। इस अवधि के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और कई हजारों पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।

25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया और

साथियों, इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य आपातकाल के दमनकारी दौर और संविधान के मूल्यों के हनन को याद करना और उनको याद रखना तथा उन लाखों लोगों के संघर्ष व बलिदान को सम्मान देना है जिन्होंने इस तानाशाही का विरोध किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 102.7 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली के अंदर से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और

0: कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे

0: दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे इस समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipulekh Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Court market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
4: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ashish Joshi said that 26 trade passes have been issued in the

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आइए सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में अगली गजल।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आइए सुनते हैं अगली आवाज, ये चंदन दास की है।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुर संगम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे।

0: गे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देशभर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाईमाधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न

0: इस संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल निगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 5 विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। प्रस्तुत है देशगान।

देश गाना भी आपने सुना, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मरुवाणी जो आधारित है लोक संगीत पर। सबसे पहले सुनते हैं अली साधना सरगम को।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं। गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का लिखते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप है सही राम नगर पीथीसर चूरू से हरि सिंह नायक, दुर्गाराम बुडानिया, चीकी रवि, विद्वान लक्षिता और आपका पूरा नायक परिवार। आप लिखते हैं, नमस्कार के साथ लिखते हैं, मिट्टी में दफन होकर भी एक बीज में बीज ने अंगड़ाई ली, चीर के अंधेरी जमी उसमें धूप से वफा निभाई, तू हालातों की बंदिशों से मायूस ना हो ए राही, वजूद उसी का खिलता है जिसने हर चोट मुस्कुराकर खाई।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अगला कमेंट हमें मिला है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। आप लिखते हैं, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है और कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने की बिल्कुल राजी नहीं। भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आपने अपना स्वभाव जीत लिया उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने देखी है। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप लिखते हैं, जीवन का आखिरी समय कैसा व्यतीत होगा इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और संस्कार तय करेंगे।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे

0: भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस समय आप सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम दिल से दिल तक। अगला कमेंट हमें मिला है, आप हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी। गमगा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल का सिर्फ एक लाइन लिखी है, अन्नदाता किसान के बिना सभ्यता और विकास की कल्पना अधूरी है। बिल्कुल बात आपने सही लिखी है, कुछ और बढ़ा चढ़ा के लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये कमेंट हमारे पास आया है विष्णु मिस्किन, रितिका, वाणी, आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी और आपका पूरा परिवार। आप लिखते हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। लिखते हैं इंसान को सबसे पहले अपने कर्म, अपने प्रयास और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची मेहनत और अच्छी सोच ही सफलता का सबसे मजबूत आधार होती है। इसके साथ साथ लिखते हैं विश्वास वही रखें जो आगे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अपने अच्छे कर्मों पर, अपनी मेहनत पर और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखें। ये कमेंट हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला का। लिखते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत और धैर्य दोनों साथ हों। असफलता अंत नहीं, सफलता की ओर बढ़ने का एक नया अवसर है। हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीद और नई संभावनाएं लेकर आता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से घबराते नहीं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है।

इसी के साथ एक कमेंट हम और लेना चाहेंगे आप हैं, सुदर्शन शाह है, लिखते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये पंक्ति जीवन के उस दर्द को बयां करती है जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर सकते। इसके माध्यम से जब दिल को जीवन का सबसे बड़ा दर्द मिलता है तो उस प्यार का अलग ही एहसास कितना कठिन होता है ये तो सामने वाला जानता है। आपका पता है, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आपके साथ हैं। पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह है।

श्रोताओं, अगला कमेंट हमें मिला है। आप हैं रवि कुमार राहुल, लिखते हैं कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। लिखते हैं, बड़ा दिल ही है जो देने में खुशी ढूंढता है। जगह सबके पास होती है पर जगह बनाना हर कोई नहीं जानता। इनाम और दान के लिए जेब नहीं, जज्बा बड़ा होना चाहिए। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहिए ताकि इस दुनिया में सच्चे लोगों की कमी नहीं रहे। ये कमेंट हमारे पास आया है गांव कलाला, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश

और आपका पूरा कड़वा सारा परिवार। लिखते हैं, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। ये कमेंट हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव का। लिखते हैं, कर्म ही पूजा है जो जीवन को दिशा और पहचान देता है। यह केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारे कौशल और व्यक्तित्व को निखारने का एक सशक्त माध्यम है। लगन और निरंतरता के साथ किया गया हर काम सफलता की नींव को बनाता है।

इस कार्यक्रम के लिए अंतिम कमेंट हमें मिला है विजय महोबिया, कविता सोनू मोनू और बाबू का। आप लिखते हैं रामगंज खंडवा से, लिखते हैं एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुराहट भी एक संक्रमण है, इसे फैलाते रहो। एक कमेंट हमारे पास आया है, आपने लिखा तो कुछ नहीं है, फरमाइशी गीत लिखा है, तो बताना चाहेंगे कि ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, अपने विचार लिखें, गीत हम आपको अवश्य ही सुनवाएंगे। आप हैं उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती, आपका पता है लधान पंडरिया छत्तीसगढ़ से।

जी हाँ श्रोताओं, कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि चूरू आकाशवाणी के इस मंच से हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे। इन सभी बातों के साथ कार्यक्रम से जाने की अनुमति दें। अपने दोस्त बाबूलाल को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था,
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे, और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया, और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे, और हमें

0: अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई।
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी। वो क्या बात है, हमारे श्रोताओं को
0: जी जी
1: बताइए।
0: जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब
1: जी
0: उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका
0: जी
1: हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले,
1: जी,
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
1: वाह,
0: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे
1: गजब।
0: सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला
1: वाला है
0: देने
1: तो।
0: वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5th ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें 5 फिगर बनानी होती थी और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है, इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे

0: ये लोग सेकंड डिवीजन में थे,
1: क्या बात है बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी जी
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती है?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
1: जी,
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं
1: जी।
0: तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी।
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला

0: और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
1: जी।
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज़ अगर देखते हैं तो रोज़ आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।
2: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फक्र।

0: की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले, यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे, और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
0: जी,
1: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं, मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं, तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
0: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
1: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
0: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और
1: जी,
0: एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ,
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है, तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं, तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा, तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
0: जी,
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी।
1: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे
0: जी।
1: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो
0: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
1: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
0: कभी
1: मतलब मैंने ऐसा कुछ

0: खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 who declined ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना, उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी,
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नज़र नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका, तो एक मैंने उसका अनुवाद किया। और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद, तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी
1: वो।
0: जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन, एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब देखा। हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुँचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश

0: देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो,
1: जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है।

0: नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि
1: जी
0: मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी
0: और मेरे
1: बिल्कुल
0: साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो
1: जी
0: ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी सुनते हैं
0: ये
1: यही
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं, और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं।

0: हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
1: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
0: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
1: जी,
0: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया है,
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा
0: ये
1: बताइए।
0: बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। दादा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी। अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है, ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो हैं खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर
1: निर्भर
0: करता है
1: करता है।
0: कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहाँ जहाँ आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को। अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि
1: जी,
0: जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: हाँ,
1: मुश्किल होता
0: मुश्किल
1: है।
0: होता है वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा दिन में 12 बजे से। 12:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम माटी के स्वर। राजस्थानी लोक रचनाओं के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे लक्ष्मण सिंह आजाद और साथी। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 से। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अपनी मासिक तनख्वाह को हिस्सों में खर्च करें, आपातकालीन नीति, थोड़ी थोड़ी बचत हर रोज। एक और चर्चा होगी गुजारे खर्च मुक्त दिन। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 पर। सायंकालीन सभा आरंभ होगी 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों के लिए युववाणी का प्रसारण किया जाएगा 5 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें रेडियो की। यह कार्यक्रम फेसबुक कमेंट्स पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे संविधान हत्या दिवस और समुद्री नाविक दिवस। 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:10 पर देशभक्ति फिल्म गीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। शाम 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार भी आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले किए जाएंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा 7 बजे से। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बाजरे की उन्नत खेती कैसे करें। इस कार्यक्रम में बाजार भाव, MSP, मौसम की जानकारी और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा के अलावा हमारे किसान भाई सुन सकते हैं कुछ राजस्थानी लोकगीत और लोक भजन। 7:30 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। हमारे केंद्र से ही रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। कंट्री वाइड यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज रात 9:30 का। रात्रि 10 बजे प्रांतीय नाटक हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं रात्रि 10:30 पर। सभा के समापन में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो यह था हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी के चूरू के इंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

जमाने की आंखों ने देखा है यारों सदा ऐसी ऐसा नज़ारा। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत रचना थी वो भी नैयर की।

मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। गज़ल फिल्म का यह सुरीला सा गीत आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना, जिसे लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना थी मदन मोहन की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रखे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: محمد رفیقو.
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
0: अंतराल के बाद सभी साथियों को फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में एक बार फिर स्वागत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, फिल्म मेहरबानी से।

मधुपुर की किसके आशिक हैं, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को मेहरबानी फिल्म में आपने सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। मोहब्बत जिंदगी है, इस फिल्म में आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले को।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप इस समय आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रखे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति महेंद्र कपूर के साथ लता मंगेशकर की आवाज में। 1919 फिल्म के इस सुरीले से गीत को लिखा आनंद पक्षी ने, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

सुने बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज़ में नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने। संगीत रचना थी

मौसम पे जवानी है, दो प्रेमी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम के समापन में ये हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर फिल्म राम कसम में। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत रचना सोनी कोमी की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए राम कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 12 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, X, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
2: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम

0: टेर दूंगी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेटी ठीक है, इधर इधर आओ सामने।
0: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास

0: है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
4: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा

0: सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 110.7 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक रचनाओं का हमारा दैनिक कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं लक्ष्मण सिंह आजाद और साथी। तो आइए इनसे सुनते हैं कुछ राजस्थानी लोक रचनाएं।

0: लक्ष्मण सिंह आजाद और साथियों को अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर में। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। इस समय दिन का ठीक एक बजने वाला है। अब आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की

0: कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए एआई आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 1,58,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या आरबीआई जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेनदेन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के अटरू में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चिरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज मैं हूं आपकी अपनी सुषमा, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। बहनों, क्या हालचाल है आपको आपके? हमें पता है कि हमारी जो बहनें हैं वो हमेशा ही खुश रहती है, लेकिन आज हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे और वो ये है कि नाम और पहचान चाहे छोटी ही क्यों ना हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहनों को किसी के नाम से पुकारा जाए कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बहू है, ये उसकी माँ है। यानी कि हमें अपनी जो पहचान है वो खुद को बनानी होगी और इसके लिए हमें आगे आना होगा। तो इसके लिए आप भरसक कोशिश कीजिए और सुनिए साथ में एक प्यारा सा सॉन्ग।

बहनों, आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। और अब जो चर्चा हम आपसे करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है हमारे बच्चों से। बच्चे जब घर में आते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद में एक जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उन्हें ये लगता है कि वो किस प्रकार से और कितने अच्छे से अपने बच्चे की केयर करे, ताकि बड़ा होने पर हमारा जो बच्चा है हमारा नाम रोशन करे, इस दुनिया में कोई अच्छा पद प्राप्त करे, अच्छा जो एक अच्छा नागरिक बने। ये सारी इच्छाएँ हमारे मन में होती है, लेकिन जो बच्चे जो होते हैं वो हमसे अलग क्यों होते हैं? अलग इस प्रकार होते हैं कि उनका जो चुलबुलापन है और उनकी बेफिक्री जो है, ये ही उनकी अपनी उम्र की पहचान होती है, जो शायद हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और यहीं से उनके सुरक्षित व्यक्तित्व की नींव भी पड़ती है। इस नींव की मजबूती बहुत सारे प्रयासों पर निर्भर है, जो कि घर के बड़ों को सुनिश्चित करनी होती है। बचपन की हर छोटी मोटी बात में भी खुशी ढूंढने वाले, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर छोटी छोटी बात में वो खुशी ढूंढ लेते हैं और उनकी हंसी जो है वो रुक नहीं पाती। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि युवा होते होते छोटी छोटी मुश्किलों को देख करके वही बच्चे घबराने लग जाते हैं। आखिर क्यों? कई बार तो वे इतने परेशान हो जाते हैं कि गंभीर तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को भविष्य में आने वाली इन चुनौतियों को लेकर तैयार करने, यानी उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने की जिम्मेदारी परवरिश का सबसे बड़ा दायित्व है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, यानी युवा लोग जो हैं, यानी हमारे जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। हमें ये लगता है कि वो कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो बहुत सारे तनावों को लेकर के घिरे होते हैं जिनको वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अगर हंसते मुस्कुराते रहेंगे तभी तो वो समस्याओं का सामना कर पाएंगे। और किस प्रकार से हम उनको तैयार करें, इसके लिए सबसे पहले निर्भर करता है हमारे घर का माहौल किस प्रकार का है। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए हमारे बच्चे पर इसका असर जरूर पड़ेगा। परिवार से बच्चों को पहला और महत्वपूर्ण सामाजिक वातावरण मिलता है। एक सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और समझदारी भरा पारिवारिक माहौल बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है। इसलिए जरूरी है कि अभिभावक बच्चों के साथ जितना हो सके समय बिताएं। यानी आपका जो टाइम है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझें और खुलकर उनसे बात करें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार के पारिवारिक विवाद से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। ना तो उसकी चर्चा हमें बच्चों के सामने करनी चाहिए, और ना ही अगर बच्चे मौजूद है और उस वक्त हम किसी भी तनाव को लेकर के बहस करेंगे, यानी घर के बड़े लोग अगर हम बहस करेंगे तो बच्चे जो हैं वो तनाव में आएंगे ही, और ऐसा करना उनके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बहनों, कुछ और चीज़ें हैं जिनका ध्यान भी हमें रखना होगा, और उनमें से ये है कि अगर हम बच्चों को सकारात्मक सहारा देंगे तो इससे भी उनमें आत्मविश्वास जो है वो पनपेगा। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी उपलब्धियों की सराहना करनी हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जब बच्चे किसी गलती, असफलता का सामना करें तो आलोचना के बजाय

से प्रोत्साहित करें। उन्हें बताएं कि असफलताएं भी जीवन का हिस्सा है, इनसे भी उन्हें अनुभव मिलता है। और सबसे ज़रूरी है कोशिश करते रहना, आपको कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी है। और अगर इस तरह से बच्चे करते हैं तो उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और वो जीवन में जो भी नए नए चैलेंजेस आएंगे उनका सामना करने में मानसिक रूप से मजबूत होंगे। इसके साथ ही साथ बहनों, बच्चों के लिए भावनात्मक समर्थन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि बच्चे अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। जब बच्चे उदास या परेशान हो और इस तरह की परेशानी वो महसूस करें तो उन्हें सुनें और उनके साथ सहानुभूति दिखाएं। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को यह एहसास कराएं कि वे हमेशा उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। इससे परेशान होने पर बच्चे जो हैं वो हमें अपने दिल की बात कह पाएंगे। बहनों, इस विषय पर बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चल लेते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
4: बहनों, हम आपसे बात कर रहे थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा था कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो बहुत ही हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं यानी युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उस वक्त उनको न जाने कितनी प्रकार की चिंताएं घेर लेती हैं और वो धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लग जाते हैं। तो ऐसा हमारे बच्चे ना करें, इसके लिए हम कुछ मुद्दे हैं और कुछ बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे बच्चे जो है उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ये भी करना जरूरी है कि हमारे बच्चों को समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चों को सामाजिक कौशलों से रूबरू कराना बेहद आवश्यक है, इससे वे लोगों के साथ बेहतर तरीके से संवाद और व्यवहार करने में सक्षम होते हैं। तो और जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने, समस्याओं का समाधान निकालने और विभिन्न सामाजिक स्थितियों का सामना करने की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। हमें समझाना होगा कि अगर हमारे बच्चों का कोई मित्र है और वो उदास है, उसे कोई परेशानी है, तो हमें अपने

बच्चे को यही सिखाना होगा कि वो जा करके उसकी हेल्प करे। अगर हमारा बच्चा जा करके उसकी हेल्प करेगा तो वो अनजाने में ही न जाने कितने प्रकार की चीज़ें जो है वो सीख जाएगा। वो ये भी सीख जाएगा कि आज हमारे फ्रेंड के सामने जो परिस्थिति आई है, अगर कल को हमारे मेरे सामने आती है तो मैं उस परिस्थिति से कैसे निकलूं। तो इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों की बेफिक्री केवल चिंता मुक्त होने तक ही हमें होने देनी चाहिए। उन्हें जिम्मेदारियों से दूर हमें कभी भी नहीं करना है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन भी तो हमें ही सिखाना है। उन्हें ऐसे काम करने दें जिनसे वे आत्मनिर्भर बने, साथ ही उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास भी होता रहे। जैसे कि उनको अपना कमरा साफ करना है, स्कूल हो जाता है उसके बाद में बच्चे जो है कॉलेज में पहुंचते हैं तो उस वक्त तक तो वो अपने पूरी जो साफ सफाई करने में दक्ष हो जाने चाहिए। इससे जो हमारे बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं और भविष्य के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए भी तैयार होते हैं। इसके साथ साथ बहनों, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, योग और डांस, इस तरह की जो शारीरिक गतिविधियां होती है वो बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। और पठन पाठन, संगीत, कला और क्राफ्ट जैसी मानसिक गतिविधियां बच्चों में सृजनात्मक और साथ ही साथ रचनात्मक और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देती है। इसके अलावा बहनों, अनुशासन बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन इसे बच्चों पर थोपे ना। घर के बड़े यानी हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जिस प्रकार से अपने सामान को रखेंगे, हम जिस प्रकार का जीवन जिएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे बच्चे उन सभी चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे। यानी कि डरा धमका कर या सजा देते हुए जो काम सिखाया जाता है वो बच्चे हो सकता है कि भय के चलते एक बार तो कर लेंगे, लेकिन जब वो हमारी नज़रों से दूर होंगे तब वो उन बंदिशों से मुक्त होने की भरसक कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि सकारात्मक तरीके से डाली गई आदतें अनुशासन का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि बच्चों को ये लगता है कि ये तो उनकी जीवन शैली है। और सबसे पहले हमें ही हमारे बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारे बदलाव अपने अंदर लेकर के आते हैं।

0: तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बहनों, बच्चों को जिम्मेदारियां सिखाना किस प्रकार चाहिए, इस पर तो बातें हमने बहुत सारी कर ली, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से निभाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने होता है। आजकल की जो जिंदगी है उसमें आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब जो है खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। देखा देखी हम लोग जो है, हम ये नहीं देखते कि हमारी आय कितनी है, हमारी सैलरी कितनी है। अगर पड़ोस में कोई ये सामान ले आया है और हमें ये भी लगता है कि हमें भी वही सामान लेकर के आना है, या हम कहीं बाहर गए किसी ने कोई अच्छी साड़ी पहन रखी है तो हमारी इच्छा हो जाती है कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली, कितने की ली, और मेरे पास भी इस तरह की साड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं देखा देखी करने की, इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा अपने दिमाग से अलग करना होगा। तो क्या करना होगा? जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी आमदनी को देखना होगा, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है। अब उस सैलरी को आपको अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा, यानी कि बच्चों की फीस है, किताबें हैं, कुल मिलाकर के उनकी पढ़ाई का जो खर्च है उसके ऊपर आप कितना खर्च करना चाहेंगे। उसके अलावा राशन का सामान है जिसमें हम कटौती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और मनोरंजन पर भी हमारा खर्चा लगता है, बिजली का बिल है, अखबार है, त्योहार है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि घर के जो खर्चे होते हैं वो अनगिनत होते हैं, और जब हम उनका हिसाब करने बैठते हैं तो हमारा हिसाब बेहिसाब हो जाता है। शुरुआत का जो दिन होते हैं, यानी जब सैलरी मिलती है उस महीने के शुरुआत के जो दिन होते हैं उनमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में हमें थोड़ा सा तंगी भरा माहौल जो है वो महसूस होने लगता है। हमारे मन में यही चलता रहता है कि अब तो पैसे खत्म होने वाले हैं। तो इन सब परिस्थितियों से बचा जा सकता है बहनों, अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, यानी कि आपकी जो सैलरी है उस और आपके जो खर्चे हैं उन दोनों को देखिए। आप आस पड़ोस में मत देखिए कि उसके घर में क्या आ रहा है और उनकी लाइफस्टाइल है वो किस प्रकार की है। आप अपनी सैलरी को देखिए और उसके हिसाब से अपने खर्चे देखिए, और उस सैलरी को उस अलग अलग जो आपके खर्चे हैं जिनमें आपने अपनी सैलरी को डिवाइड करना है उसको अच्छे से डिवाइड कीजिए। और एक हिस्सा जो कि बहुत ज़रूरी है वो है बचत का हिस्सा, यानी हर सैलरी में से आपको बचत का हिस्सा भी रखना है ताकि आपके पास एक आपातकालीन निधि जुड़ जाए, यानी जब भी कभी अचानक से जरूरत पड़े तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। ये आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, और जरूरी नहीं है आपको ही जरूरत पड़े, हो सकता है घर परिवार में किसी और को भी जरूरत पड़े तो आप उस वक्त उसकी मदद कर सकते हैं। यानी जितने भी खर्चे हैं उनमें बचत का हिस्सा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये ना हो कि महीने का जो अंत अगर आ रहा है और उस वक्त हमारे पैसे भी खत्म हो जाए। नहीं बहनों, उस वक्त हमें बचत भी करनी है, जितने हमारी आय है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी थोड़ी बचत हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हमारे पास एक अच्छी खासी आपातकालीन निधि जो है वो तैयार हो जाए। और ये आपातकालीन निधि जब आप तैयार करें तो उसमें एक चीज और सहायक हो सकती है, और वो है एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बिना खर्चे के हो, यानी गुजारे खर्च मुक्त दिन। एक दिन ऐसा हो जिस दिन आपको ये होना चाहिए कि आज हम कोई भी खर्चा नहीं करेंगे, जो भी घर में सामान रखा है वो ही खाएंगे और उसी से गुजारा करेंगे। अगर इस प्रकार से भी आप करेंगे और इस तरह का प्रण भी लेंगे तो देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से आपकी जो आय है, यानी आपकी जो आपने आपातकालीन निधि जो इकट्ठी की थी वो किस प्रकार से आपके लिए एक बड़ी राशि बन करके तैयार हो जाएगी।

बहनों, हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं कि हमें जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है हमारे भोजन पर, यानी हम अपना भोजन जो है वो किस प्रकार का करते हैं और साथ ही साथ कब करते हैं, यानी भोजन करने का जो समय है वो भी बहुत मायने रखता है। और शाम के भोजन के बारे में तो अक्सर हमने यही सुना है कि शाम का जो भोजन है यानी जो रात वाला भोजन है उसे 6-7 बजे तक कर लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है बहनों ऐसा, और क्या है इन सब के लाभ? चलो इन्हीं सब चीजों की चर्चा अब हम कर लेते हैं। शाम को 6 या 7 बजे तक खाना खाने से शरीर को पाचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इस दौरान विभिन्न पाचन एंजाइम और एसिड भोजन को बेहतर ढंग से तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक प्रभावी तरीके से हो जाता है और खाना सही ढंग से पचता है। साथ ही पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज से भी हमें राहत मिलती है। इसके अलावा देर रात में अगर आपने भोजन किया है तो उसके बाद में शारीरिक गतिविधियां जो है वो नहीं हो पाती हैं। इससे कैलोरी की खपत कम होती है और शरीर में अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है। वहीं जब आप शाम को खाना खा लेते हैं तो शरीर को कैलोरी जलाने का भरपूर समय मिलता है, जिससे वजन को नियंत्रित रखना आसान हो जाता है। और बहनों, अगर हम शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और इससे शरीर तेजी से ऊर्जा का उपयोग कर पाता है और आप और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार होता है, जिसके बढ़ने से शरीर कार्बोहाइड्रेट को बेहतर ढंग से पचाता है और उपयोग कर पाता है। इसमें रक्त शर्करा का जो स्तर है वो भी स्थिर रहता है और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कम होता है। इसके अलावा बहनों, जल्दी खाना खा लेने से शरीर की जैविक घड़ी बेहतर तरीके से काम करती है, जिससे सोने जागने का जो चक्र है, शरीर का तापमान, हार्मोन उत्पादन और शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सही रहती है। इससे तनाव और चिंता को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इंसुलिन और शर्करा स्तर संतुलित होने से मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी पैदा नहीं होती है और इन सब बदलाव से नींद का पैटर्न भी सही रहता है। देर रात भोजन करने से पाचन तंत्र को आराम नहीं मिल पाता, जिससे नींद में समस्या होने लगती है। वहीं जब अगर हम 6-7 बजे खाना खा लेते हैं तो शरीर को पाचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे सोने से पहले पाचन तंत्र अधिक आरामदायक स्थिति में होता है और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। और हमें पता है कि बहुत सारी बहनों की शिकायत यही रहती है कि रात को नींद नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारी जो नींद है उसमें सुधार हो सकता है। इसके अलावा बहनों, रात को देर से खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, जो हृदय रोगों का कारण बन सकता है। समय जो है सुधारने से शरीर जो है, यानी अगर हम अपने खाने पीने का समय अगर सुधार लेंगे तो शरीर को जो है इन सारी चीज़ों को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इससे उनके स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो हृदय के लिए

0: नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान

0: दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में

0: सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आप सुन रहे थे आई मिलन की बेला फिल्म का ये सुरीलासा गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीत रचना थी शंकर जयकिशन की और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की।

देखा है सभी ने चांद को, दिल ने पुकारा फिल्म में भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। इस गीत को लिखा था इंदी वर्ग ने और संगीत रचना थी कल्याण जी आनंद जी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म सलाम मोहब्बत से।

गुलों के रंग सितारों की रोशनी दे दूं। सलामे मोहब्बत फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था निदा फाजली ने और संगीत रचना थी उषा खन्ना की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुमार सानू की आवाज़ में दिलवाले फिल्म का ये सुरीला से गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत रचना थी नदीम श्रवण की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप इस समय आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रखे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कैलाश खैर की आवाज़ में।

क्या सुपर कूल हैं हम। इस फिल्म में आप सुन रहे थे कैलाश खैर को। कार्यक्रम का समापन मोहम्मद रफी की आवाज से। गजल फिल्म के इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने।

इश्क की गर्मी ये जज्बात किसे पेश करूं। मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था गज़ल। गज़ल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू के केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रथम सभा यहीं सम्पन्न होती है। शाम 4 बजे दिल्ली से रिले संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 100.7 मेगा हर्ट्ज पर 4 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स से जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माय पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली एकेडमिक की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबॉडी कि भाई

0: ये कैसे, बट हाँ मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एन सी सी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें. तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज, और फिर आई एम ए ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी. तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
1: जी,
0: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं. तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं, जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा.
1: ओके, मतलब पूरा वो.
0: हाँ, तो हमारी हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली जेएनके का ही है. तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है. इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में.
1: ओके,
0: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं. तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है, देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स. तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई.
1: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस
0: वो वापस घूम फिर के वापस
1: घूम फिर करके आया. लेकिन सर, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा. उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा था.
0: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है. अच्छा. तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे. तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते. अच्छा. रहे जी. तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से.
1: अच्छा.
0: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं, जहां से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में. तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर.
1: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
0: जी जी, देयर आर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस. एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं. तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट. तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, बड़ा आवश्यक हो जाता है. तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं. ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है. बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का.
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है. और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया. तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर. आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं. हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम्पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे, मतलब

0: के बेंचेस उन्हीं की वो टेबल तक आई, बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
1: अच्छा।
0: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती है। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफस्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्र उठ जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देकर आ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफस्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस।
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आ गया कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक।
1: हमेशा के लिए वो बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते
0: जी,
1: रहेंगे।
0: जी, जी,
1: तो ये
0: जी.
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी

0: कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे,
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको BSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ, बस ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ, जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
1: सर, ये
0: अचीवमेंट।
1: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो
1: जी
0: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: सर एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
1: ओके
0: हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन,
1: ओके
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस भर दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
1: जी
0: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
1: ओके
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
1: जी
0: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है, पर
1: जी
0: यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन
0: भावना डाली जाती है,
1: बिल्कुल
0: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर
1: बिल्कुल
0: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को
0: चॉइस
1: लेकर
0: हो
1: के
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर
0: जी
1: सामने
0: जी
1: आ जाएगा
0: जी
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो, या
0: या जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके
1: हो
0: हैं,
1: चुके हैं
0: हाँ
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल की
0: तो दस
1: लिमिट
0: से
1: है।
0: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी, और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वाडवन से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई गो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोद फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है।

0: है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में, हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बीइंग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमाटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहां
0: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप?
1: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों को उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर.
0: ओके.
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
0: सर. लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको

0: अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट्स आपने बताए उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
0: जी तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
1: फिर आगे बढ़ते हैं।
0: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रिस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था। जी, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर पाए।
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट। एक्चुअली
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है
0: वो एक लाइफ
1: life,
0: और बहुत ही स्पेशल है,
1: समझता हूँ।
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो।
1: जी,
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?

0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ। सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
1: जी
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
1: जी
0: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
1: जी
0: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए,
1: सर्विस
0: नेवी
1: दे,
0: में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ
1: बिल्कुल
0: लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
1: जी,
0: बरकरार रहे।
1: बरकरार रहे
0: तो वो एक
1: वो
0: बहुत
1: जोश और जज्बा
0: बहुत
1: और देशभक्ति
0: वो
1: की जो भावना
0: जश्वा।
1: है वो बरकरार रहनी
0: एग्जैक्टली
1: चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: सर एक
0: एग्जैक्टली
1: चीज यहां भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो
1: अच्छा
0: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ
1: जी
0: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 12th आते आते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी। तो
1: ओके
0: एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया
1: अच्छा
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में
1: एग्जैक्टली
0: इंक्लूड कर सकते हैं।
1: कम से कम उनके
0: जी
1: अंदर वो
0: जी
1: चीज, वो
0: राष्ट्रीय
1: जज्बा, वो
0: भावना और
1: भावना
0: वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल
0: यस
1: बिल्कुल, वो
0: यस
1: चीज में बरकरार रहनी चाहिए और
0: बहुत
1: उसके अंदर वो जोश जज्बा और
0: जी
1: देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
0: माध्यम
1: हाँ
0: होता
1: भाई
0: है।
1: क्यों वो
0: जी
1: अपने देश से मोहब्बत करता है और वो क्यों
0: बिल्कुल
1: उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
0: जी
1: सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे
0: जी
1: अब आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है एआई हर जगह पर है,
0: जी
1: तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड
0: जी
1: किया जा रहा है उसको,
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: यहां पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहां पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक आप भी एंजॉय करें, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए सर, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जिसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI
1: विल
0: अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बनी चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा, और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को

0: के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके।

0: धनबाद झारखंड, वंदे मातरम भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
0: जी।
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके,
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
0: जी।
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है।
0: पूछने वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज, सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज थॉट तो है ही। जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
0: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता, प्रेफर करता है।
1: जी, जी,
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
1: जी।
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
0: किताबें
1: देखिए साहब, आप
0: तो
1: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए।
1: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए।
0: अच्छा।
1: किस तरीके से दूर रहना है, देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
0: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
1: भी, अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीजों से। प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है।
0: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो,

0: वो छूट नहीं पा रहा है,
1: छूट नहीं पा रहा
0: तो
1: है लोग।
0: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
1: देखिए कुछ चीजें
0: तो डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है
1: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली वी विल कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
0: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिस्टर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
1: तो थैंक यू सो मच,
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू सो मच
0: आने के लिए
1: जी।
0: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे। कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी। और आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त शालिनी को। तो प्रोग्राम में शामिल तमाम श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार।

जी साथियों, प्रोग्राम में शुरू हो चुका है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है बातें रेडियो की। जी हाँ दोस्तों, इस बातें रेडियो की सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर किए आपके कमेंट्स पर आधारित ये कार्यक्रम रहता है, जहां आप सभी हमसे जुड़ते हैं, हर चर्चा के विषय में अपने विचार जो है वो व्यक्त करते हैं। और आज भी हम एक ऐसे ही विषय के बारे में बातें करेंगे, आपके विचार जानेंगे। और आज हम ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जो केवल सूचना देने का काम नहीं करता, बल्कि समाज की धड़कनों को महसूस करता है, लोगों की आवाज बनता है और हमारी संस्कृति की खुशबू को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि स्थानीय मुद्दों और लोक संस्कृति को मंच देने में रेडियो की क्या भूमिका है। श्रोताओं, जब हम आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, तब भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जनता और समाज के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। ये वो साथी है जो गांव के चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक लोगों की बात सुनता भी है और सुनाता भी है। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी समस्याएं और अपनी पहचान भी है, लेकिन कई बार स्थानीय मुद्दे बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में रेडियो एक ऐसा माध्यम बनकर सामने आता है जो स्थानीय लोगों की आवाज को महत्व देता है। कहीं पेयजल की समस्या है, किसानों को परेशानी है, सड़क या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, या फिर शिक्षा से जुड़े मुद्दे हो, रेडियो इन विषयों को सामने लाता है। रेडियो के कार्यक्रमों में आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है, अपनी समस्या लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है और कई बार प्रशासन भी इस पर ध्यान देता है, और इसी कारण रेडियो को आम आदमी का सबसे विश्वसनीय साथी कहा जाता है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे ही कुछ खास विषय के बारे में बात करेंगे और आपके विचार भी जानेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं और लोक संस्कृति है उसको मंच देने में रेडियो

की क्या भूमिका रही है उस पर अगर आपके विचार देखें तो बातें रेडियो के सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमें मिले हैं जिसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, जो लिखते हैं, नमस्कार जी। जी आपको भी नमस्कार। ये लिखते हैं कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हर मुद्दे की जो भी चर्चा होती है उसे घर घर पहुंचाने का काम करता है। उससे सुनने वाले को जानकारी मिलती है जिससे वो जागरूक होता है। लोक संस्कृति से भी उम्दा जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कृति क्या है। कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन रेडियो के माध्यम से हर सुनने वाले को पूरा ज्ञान मिलता है। बहरहाल रेडियो एक अध्यापक का भी काम करता है जो हमें इन बातों की शिक्षा देता है जो हमारी जिंदगी में अहम रोल निभाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर एक जो जानकारी है मुद्दे के बारे में जो भी चर्चा है वो घर घर पहुंचाने का काम हमारा साथी रेडियो ही करता है। और साथ ही साथ जो हमारी लोक संस्कृति है उसके बारे में भी जानकारी रेडियो ही बताता है। और साथ ही साथ रेडियो की इन्होंने कल्पना जो अध्यापक के बारे में बताया है कि रेडियो एक अध्यापक का काम भी करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है। उन बातों की शिक्षा, उन बातों के बारे में जानकारी, उन बातों का जुड़ाव जो है वो हम रेडियो के माध्यम से महसूस भी करते हैं। जी आपने बहुत ही अच्छे विचार जो हैं वो हमारे साथ साझा किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों और भी बातें करेंगे, फिलहाल लिए चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और बने रहिए 100.7 FM पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है बातें रेडियो की, जिसमें हम चर्चा करते हैं कुछ एक खास विषय के बारे में और साथ ही आपके कमेंट्स जो हैं उस पर आधारित ये कार्यक्रम रहता है। आप अपने विचार जो है उस चर्चा के विषय के ऊपर अपने विचार जो है वो व्यक्त करते हैं और हम उन विचारों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे समाज, हमारी पहचान और हमारी सांस्कृतिक विरासत से सीधा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि ये समाज की आवाज़, संस्कृति का संरक्षक और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाने वाला सशक्त मंच भी है। रेडियो को संचार का सबसे सरल, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। चाहे शहर हो या गांव, पहाड़ हो या रेगिस्तान, रेडियो की पहुंच हर जगह है और यही कारण है कि आज भी रेडियो लाखों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। जहां कई बार इंटरनेट और टीवी की पहुंच सीमित हो जाती है, वहां रेडियो अपनी आवाज के माध्यम से लोगों तक जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता रहता है। और ऐसे ही टॉपिक्स जो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स पर आधारित ये हमारा खास सेगमेंट रहता है। आगे हम कमेंट्स की बात करें तो अगला कमेंट हमें मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, जो लिखते हैं कि कार्यक्रम बातें रेडियो की पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। ये आगे लिखते हैं कि स्थानीय मुद्दों और लोक संस्कृति को मंच देने में रेडियो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी है। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बिना किसी भौगोलिक बाधा के सीधे जन जन तक पहुंचता है। स्थानीय मुद्दों और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में रेडियो के प्रमुख योगदान इस प्रकार है। लोक संगीत और कला का संरक्षण, रेडियो क्षेत्रीय लोकगीतों, पारंपरिक संगीत और स्थानीय कलाकारों को अपने प्रसारण के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाता है, जिससे विलुप्त होती कलाओं को नया जीवन मिलता है। स्थानीय भाषा और बोलियों का प्रसार, यह क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे लोगों का अपनी संस्कृति और मातृभाषा के प्रति जुड़ाव मजबूत होता है। जन सरोकार और स्थानीय मुद्दे, स्थानीय स्तर की समस्याएं जैसे पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता से उठाकर रेडियो प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण, लोक कथाओं, पारंपरिक त्योहारों और रीति रिवाजों पर आधारित कार्यक्रमों विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखता है। बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो है अपने

अपने इस कमेंट में इन्होंने बताई है, जिस तरीके से रेडियो के अंदर स्थानीय भाषा और बोलियों का प्रसार किया जाता है, अपनी संस्कृति से, अपनी मातृभाषा से लोगों को जुड़ाव महसूस किया जाता है, साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं और सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण किया जाता है। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें जो है वो इन्होंने अपने विचार के थ्रू हमारे साथ साझा की है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए ये जरूरी है कि वहां की समस्याएं और जरूरतें जो है वो सही मंच तक पहुंचे। रेडियो इसी कार्य को बहुत प्रभावी ढंग से करता भी है और रेडियो जो है वो कार्यक्रमों में श्रोताओं के कॉल, पत्र और जो संदेश है वो शामिल किए जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और प्रशासन तक उनकी समस्याएं पहुंचती भी है, या यूं कहें कि रेडियो समाज और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। दोस्तों, कई बार बहुत सारी योजनाएं लोगों तक पूरी जानकारी के साथ नहीं पहुंच पाती, लेकिन रेडियो इन योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाता है, साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी संबंधित विभागों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस तरीके से समस्या के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक जो पेशकश है वो रेडियो के थ्रू की जा सकती है। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युववाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है बातें रेडियो की, जिसमें आज का हमारा चर्चा का विषय है स्थानीय मुद्दों और लोक संस्कृति को मंच देने में रेडियो की क्या भूमिका रही है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं लोक संस्कृति के बारे में या फिर जो जनहित के जो भी मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हम रेडियो पर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो टॉपिक्स हैं वो युवा पीढ़ी से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर युवा पीढ़ी के जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि संस्कृति को सहेज कर रखना और स्थानीय मुद्दों को इस तरीके से जो समस्या है उनको सभी के सामने लेकर आना युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें देश को प्रगति पर लाने का जो साधन है वो सिर्फ और सिर्फ युवा ही है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, जितना ज़्यादा स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो हमारे देश के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और जब भी अगर हम बात करें हमारे समाज में लोक कथाएं या फिर जो भी लोक बोलियां हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उनके साथ अधिक से अधिक जुड़ाव महसूस करना और जो भी चीज़ें मातृभाषा के बारे में अगर हम जानकारी रेडियो के थ्रू सुनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भी हमारे रेडियो सेट से प्रसारित होते हैं जहाँ से लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा से जुड़ते हैं। तो रेडियो स्थानीय भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करके उनके संरक्षण में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, और साथ ही साथ ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, इसलिए किसानों से जुड़े मुद्दे भी रेडियो पर विशेष रूप से स्थान पाते हैं। साथ ही किसान जो है वो अपनी समस्याएं साझा कर विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में और किसानों की जो आय है उसे सुधारने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, अगले कमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमें लिख भेजा है शोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन आरोही, प्रियांशी सोनी ने। वो लिखते हैं कि रेडियो समाज का सशक्त माध्यम है, यह स्थानीय समस्याओं, जनहित के मुद्दों और लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाता है, साथ ही लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रसारित कर हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रेडियो स्थानीय कलाकारों को पहचान दिलाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करता है। जी, आपके विचार जो है उससे ये साबित होता है कि जो रेडियो है वो कहीं हद तक क्षेत्रीय समस्याएं और जो लोक सांस्कृतिक है उसको मंच देने में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभा रहा है। अगला कमेंट अगर हम ले तो वो हमें लिखा है नोहर हनुमानगढ़ राजस्थान से, ये लिखते हैं राम राम सा। जी, आपको भी राम राम सा। हमारी लोक संस्कृति, क्षेत्रीय बोलियों और ग्रामीण अंचलों के स्थानीय मुद्दों को अगर कोई बिना किसी शोर शराबे के असली मंच देता है तो वो सिर्फ रेडियो है। आज सोशल मीडिया के दौर में भी हमारी धुनारी धरती, संस्कृति और जमीनी समस्याओं को जो मजबूती आकाशवाणी देता है उसकी

की होड़ कोई नहीं कर सकता। रेडियो आज भी हमारी परंपराओं का सच्चा रखवाला है। इस शानदार विषय के लिए आकाशवाणी चूरू की पूरी टीम को धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को, इस चर्चा के विषय को बहुत सराहा है और अपने विचार जो है वो हमारे रेडियो के माध्यम से लोगों तक साझा किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, प्रोग्राम ऐसे ही जारी रहेगा, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों, आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर है, फिर भी रेडियो की लोकप्रियता बनी हुई है। कई अलग अलग माध्यम से रेडियो के जो नए जो श्रोता है, साथी हैं, वो जुड़ रहे हैं और रेडियो जो है वो नए रूप में श्रोताओं तक पहुंच भी रहा है। डिजिटल तकनीक ने रेडियो को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। अब लोग दुनिया के किसी भी कोने से अपने पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग जो विषय है उस पर रेडियो जो है अपनी बातें रखता ही है, साथ ही महिलाओं और युवाओं की आवाज़ को भी रेडियो अपनी बात रखने का अवसर देता है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सामाजिक जागरूकता जैसे अनेक विषयों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। युवा वर्ग के लिए करियर, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता से संबंधित कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार रेडियो समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करता है और साथ ही साथ आपदा या संकट की स्थिति में रेडियो की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्थानीय भाषा में दी गई जानकारी जो है वो लोगों को सही निर्णय लेने और सुरक्षित रहने में सहायता भी करती है। दोस्तों, साथ ही रेडियो जो है वो केवल सूचना और मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य जागरूकता और मतदान जैसे विषयों पर रेडियो लगातार जन जागरण करता है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करके यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में योगदान देता है। रेडियो केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि समाज की धड़कन है। यह आम लोगों की आवाज को मंच देता है, स्थानीय समस्याओं को उजागर करता है, प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करता है और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। लोकगीतों से लेकर लोक कथाओं तक, किसानों की समस्याओं से लेकर युवाओं के सपनों तक, महिलाओं की आकांक्षाओं से लेकर सामाजिक विकास तक, रेडियो हर क्षेत्र में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता, सरलता और जन सरोकारों के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाए हुए हैं और हमें अपनी स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए रेडियो जैसे माध्यमों का सहयोग भी करना चाहिए और इन्हें सुनना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और आज एक विशेष दिवस के बारे में हम बात करें तो आज समुद्री नाविक दिवस है, जिसमें इस दिवस पर उन लाखों नाविकों और समुद्री कर्मियों को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जो दिन रात समुद्रों में रहकर विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री नाविक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दोस्तों समुद्री नाविकों के योगदान को पहचान देना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। दुनिया के अधिकांश देशों के बीच होने वाला व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और अनुमान है कि विश्व व्यापार का लगभग 80 से 90% हिस्सा समुद्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। इस महत्वपूर्ण काम को सफल बनाने में नाविकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। समुद्री नाविक वे लोग होते हैं जो मालवाहक जहाजों, यात्री जहाजों, तेल टैंकरों और अन्य समुद्री पोतों पर कार्य करते हैं, और वे महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। समुद्र में तेज तूफान, ऊंची लहरें, खराब मौसम और कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, लेकिन फिर भी नाविक अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और साहस के साथ करते हैं। आज के आधुनिक युग में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश किसी न किसी समय समुद्री परिवहन के माध्यम से हमारे देश तक पहुंचती है। चाहे वो खाद्यान्न हो, पेट्रोलियम उत्पाद हो, दवाइयां हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या अन्य आवश्यक वस्तुएं, इन सब की आपूर्ति में समुद्री परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर नाविक अपना काम ना करे तो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। समुद्री नाविक दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में नाविकों का कितना बड़ा योगदान है। अक्सर हम उनके काम को प्रत्यक्ष

रूप से नहीं देख पाते, लेकिन वे समुद्र में रहते हैं, लेकिन उनका परिश्रम हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन को सुचारू बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोविड-19 महामारी के दौरान समुद्री नाविकों की भूमिका और भी ज़्यादा अधिक स्पष्ट होकर सामने आई, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन और अलग अलग प्रकार के प्रतिबंधों से जूझ रही थी, तब भी लाखों नाविक समुद्र में रहकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे थे। कई नाविक महीनों तक अपने घर नहीं लौट सके, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा। इस कठिन समय में उनके समर्पण और सेवा भावना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत भी एक समुद्री राष्ट्र है जिसकी विशाल तटीय सीमा और समृद्ध समुद्री परंपरा है। भारतीय नाविक विश्व भर के जहाजों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और अपनी मेहनत, अनुशासन और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। भारतीय समुद्री उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे लिए ये जो दिन है, ये जो दिवस है, वो और भी ज्यादा महत्व रखता है। समुद्री नाविकों को केवल सम्मान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और मानसिक कल्याण का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहने के कारण उन्हें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सरकारों को भी समुद्री संगठनों और शिपिंग कंपनियों को उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुरक्षित कार्य वातावरण, उचित वेतन, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसी के साथ साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा में भी नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे समुद्री प्रदूषण को रोकने और पर्यावरणीय नियमों का पालन करने में सहयोग करते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं, तब नाविकों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। समुद्रों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ समुद्री जो नाविक है केवल जहाज चलाने वाले कर्मचारी नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। उनके साहस, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार और संपर्क बना रहता है। और साथ ही समुद्री नाविकों का जो योगदान है वो अमूल्य है। उनके बिना वैश्विक व्यापार, आर्थिक विकास और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की कल्पना जो है वो करना कठिन है।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और आज के कुछ खास विषय पर अगर हम चर्चा करें तो आज का जो 25 जून का जो दिन है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाता है। भारत सरकार ने 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और ये जो दिवस है दोस्तों वो वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन घटनाओं को याद करना है जब देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई थी। दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ है नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार, सरकार के बारे में कुछ भी जो उनके अधिकार होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए, और न्याय प्राप्त करने का अधिकार। जब ये अधिकार सीमित हो जाते हैं तब लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है, और संविधान हत्या दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। ये हमें न केवल अधिकार देता है बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हो और शासन जो है वो जनता की इच्छा के अनुसार चले। जब हम इस दिवस को याद करते हैं तब हम केवल अतीत की घटनाओं को नहीं दोहराते बल्कि उनसे सीख भी लेते हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब नागरिक जागरूक होंगे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे तथा संविधान के मूल्यों का सम्मान करेंगे। और संविधान हत्या दिवस का एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो युवाओं के लिए भी है। आज का युवा भारत का भविष्य है, उन्हें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व को समझना चाहिए। और संविधान हमें यह सिखाता है कि मतभेद जो है वो लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। अलग अलग विचारों का सम्मान करना, संवाद बनाए रखना और कानून के शासन पर विश्वास करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति की पहचान भी है।

जी दोस्तों, ये तो था आज का प्रोग्राम और आज के सेगमेंट बातें रेडियो के जरिए आप भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं और जिसके लिए ऑफिशियल पेज जो है वो रहता है आकाशवाणी चूरू, जिस पर आप जो भी चर्चा का विषय रहता है उस पर अपने विचार जो है वो साझा कर सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दीजिए, आपकी दोस्त शालिनी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युवाणी। FM 107 MHz नाम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेषाही कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

शाम 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत और 6 बजकर 20 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। शाम 6 बजकर 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6 बजकर 40 मिनट पर जिले की चिट्ठी और 6 बजकर 45 मिनट पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में गुलदस्ता।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड। रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम प्रांतीय नाटक। इसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इसमें आज आप सुन पाएंगे गजलें। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अभी आपने जाना कार्यक्रम विवरण। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, तो दोपहरांत 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:40 पर

0: धनं थापेलो मासेको इत्यनेन कृतम्। भारतदेशं विरुध्य बांग्लादेशः आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्वचषके अद्य मैंचेस्टर नगरस्थे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रीडांगणे समूह अ क्रीडायां स्पर्धिष्यते। क्रीडा भारतीय समयानुसारं सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। प्रियः श्रोतारः, मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते। आपत्कालकाले लोकतांत्रिक मूल्यानां रक्षयन्त्रिभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्रद्धांजलिः समर्पिता। विदेश कार्यमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक समस्यानां मध्ये दृढतर सहयोगस्य आवाहनं कृतवान्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्राम नगरे ब्रिक्स ऊर्जा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएला देशे एकस्यानन्तरम् अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः। इति वार्ताः।
1: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रुपए माहवार भी दिए जाएंगे।
2: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाईमाधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
3: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा। क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक

0: कंपनी है।
1: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
2: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें हमने क्यूआर कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
3: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उसकी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
4: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी

0: तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार है। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब पौन घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में 1-1 इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए। निर्जला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल करबला मैदान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी

0: माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल भराव की स्थिति नहीं बने। जहां आवश्यकता है वहां नालों के सुधार और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा नालों में नहीं डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह खेल संकुल में हुआ। इससे पहले 50 दिनों तक योग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में नियमित योगाभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इनमें भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत रेस अदालत माए ब्रिक्स देशारा ऊर्जा मंत्रियारी मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी, ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास और नवाचार रबारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीना दी जावन वाले सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली रि हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशा रा ऊर्जा मंत्रिया री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा है। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वे कहो कि भारत आवता भगत माए ऊर्जा हल्का सारू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचा और भंडारण प्रणाली माथे तेजियों काम कर रही।

0: है। मनोहर लाल कहो कि देश में हाल ताई बिजली रा 6 करोड़ों बत्ता स्मार्ट मीटर लगातिया चिया है। ब्रिक्स देशारा नुमाइंदा री आ मीटिंग काली फैला। साल 1975 माए देश माए लगाई चिया आपातकाल री वर्षगांठ रे मौके आज लोकतंत्र सेनानिया ने नमन करी चियो। ई मौके राजधानी जयपुर माए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ई कार्यक्रम माए शामिल थिया। ई मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानिया री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो। वे कहो का ईसा गई लोकतंत्र सेनानिया ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला।
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर में अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाई जाई भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो। ई मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी। वे कहो कि देश में दंड संहिता ने न्याय संहिता में बदलणु न्याय देवण रो काम तेज और आसान फियो है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि समाज रा गरीब तबकारी जनता ने टेम सर न्याय दिरावण माथे अभियोजन रो खास ध्यान है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान पीटीईटी परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। इनु राज्य रा 900 बत्ता बीएड कॉलेज में दाखिला दिया जावेला। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर में वीएमओयू रा क्षेत्रीय कार्यालय नतीजा जारी कीना। ई मौके वे अव्वल रहा विद्यार्थियों ने फोन कर बधाई दीनी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ही 10वीं और 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर राज शिक्षा संकुल नु नतीजा जारी कीना। अप्रैल मई 2026 माए वी ई परीक्षा माए करीब 83 लाख विद्यार्थी बैठ्या। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल री सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बतायो कि ओपन स्कूल नियमित स्कूल शिक्षा हासिल नहीं कर सकया विद्यार्थियों ने पढ़ाई करावन रा मकसद नो काम करे है। वे कहो कि ओपन स्कूल छोड़ देवन वाला बच्चा री तादाद कम करण माए मददगार साबित हो रहा है। अरुणा शर्मा कहो कि ऑन डिमांड परीक्षा करावन रा हल्का माए स्टेट ओपन बोर्ड देश माए अव्वल रहो है।
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र में जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां मांगी है। अर्जियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मथे 10 जुलाई ताई दाखिल करी जा सके है। स्कूल शिक्षा रा हलका माए बेहतरीन काम, नुआ काम और समर्पण रो दर्शाव करण वाला अध्यापका ने हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा जावे है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पाली जिला रा सादड़ी माए राखी जिया एक धार्मिक कार्यक्रम माए संता और गौ रक्षा आंदोलन रा बारा माए विचार बताया। इन पाछे वे राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ किला माए महाराणा प्रताप रा जन्म रिठौड़ी देखी। श्री बागड़े अहलकारा ने किला माए आवन वाला सैलानिया सारू सुबिता बधावन रा हुक्म दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर

कुंदनपुरा गांव में देश रो पहलो आधुनिक एग्री पीवी प्लांट लगाइचियो है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन रो उद्घाटन कीनो। पीएम कुसुम योजना रा तहत 600

0: ले सकेला।
1: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है, और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
0: राज्य में बीजा ने प्रमाणित करण रो काम और साफ कोई सागे और किसान अनुकूल बनायो चावेला। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था रा संचालन मंडल रे आज जयपुर माई भी मीटिंग माई ओ फैसलो करीचियो। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल री सदारत माइफी मीटिंग माए बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच ने एक सागे चलावन रो फैसलो करीचियो। इस आगे बीज प्रमाणीकरण सारू लागू क्रॉप कैलेंडर माए जरूरी बदलाव रो फैसलो ये करीचियो। अरब मौसम चौमासारी बिरखा स्वरूप है वणु पहली राज्य में आवता 4-5 दिन ताई कठे कठे गरज चमक सागे जोरदार बायरो बाजण और बरसात वेवण रा आसार है। आवता महीना रा पहला सप्ताह माए प्रदेश रा कई हलका माए बिरखा बधबा रा आसार है। ये बीचे आज दोपहरा पाछे राजधानी जयपुर माए आंधी चालन सागे करीब 1.5 घंटा ताई झमाझम में बरसियो जिणु कई ठोणा पानी फरक्यो। कोटपुतली बहरोड माए आंधी चालन सागे छाटो छिड़को भियो। काल भरतपुर नागौर सीकर चूरू और श्रीगंगानगर रा कुछ हलका माए 1-1 इंच और मोमबत्ती बिरखा भी। निर्जला ग्यारस रे मौके आज आखा राज्य में जात्रु दान पुण्य कीना। न्यारी न्यारी ठोड़ा सामाजिक संगठन और दूजा लोगा ने ओरू छबी लगार राहगीरा न ठंडो पाइचियो। निर्जला ग्यारस न जल सेवा रो खास महत्व मान्यो जावे है। दूजी गानी मुहर्रम काल मनायो जावेला। ओ इस्लाम नुआ साल रा 10वां दिन आशूरा न मनायो जावे है। करबलारी जंग माए हजरत इमाम हुसैन और मारा साथियां रे शहादत री याद माए ओ दिन अकीदत सागे गमगीन माहौल माए मनायो जावे है। ये मौके ताजे आई निकालिया जावे है। राजधानी जयपुर माए मुहर्रम रे मौके छोटा मोटा करीब 300 ताजियां रो जुलूस निकालियो जावेला। ताजिया मोड़ी रात करबला मैदान माए सुपुर्द खाक करिया जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुहर्रम शांति सागे मनावन री अरज कीनी है। वेस्ट जॉन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होड़ माए पाली रा गिरीश रल सोनारो और राहुल बारेसा कांसारो तमगो जीतियो है। आ होड़ छत्तीसगढ़ रा बालोद माए भी ही। देश माए पोलियो री बीमारी न जड़ खत्म करन रा मकसद चलाया जा रहा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रा तहत 28 जून दीतवार ने 5 साल ताइन रा बच्चा ने पोलियो बचाव री दवा री खुराक पाई जावेला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब राज्य रा सगला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र और खास तौर बनाई जिया पोलियो बूथा मथे आ खुराक पाई जावेला। दीतवार ने दवाई नी पीवन वाला बच्चा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार आ खुराक पावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। नंबर ओ जू सुन ले रहा सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहा। भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशारा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास और नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री PV प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आ

0: अवता 4-5 दिन ताई चौमासाऊ पहली री हलचल चालती रहवण रो अनुमान इसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो भानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला नमस्कार
1: एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: पर सुनना रे सभी किसान भाई बहना ने, भाई अर्जुन का निशु
4: और भाई देवा का निशु, मुगला मुगला,
3: राम राम, राम राम देवा, राम राम, राम राम देवा भाई, राम राम।
4: अर्जुन भाई, बार जो को बगत है ने,
3: हाँ हाँ,
4: वो चौमासे को जो को टीम है वो चलन लाग रही है।
3: हाँ सा,
4: और चौमासो जद मान लो मानसून पूर्व की जी बरसात हो जाए ने, इसके बाद में की है कि चौमासो शुरू हो जाए, क्योंकि खरीफ की फसल है बा बुआई वा कर दिया शुरू, तो खरीफ की आपनी जी की फसल ही बंक भाई ने जी मान लो जठे जठे मानसून पूर्व की बिरखा हुई है, बठे बठे बा शुरू हो रही है। और आप माना के भाई ज्यादातर आपनी बाजरे की जी की बुआई है अर्जुन भाई, बा बाजरे की बुआई आपनी ज्यादातर मानसून पूर्व की बरसात का मायने हुआ
3: है,
4: और बार बिरखा है बा जोरदार होने लग रही है। खास रूप जो अपने क्षेत्र की बात करा, आप चूरू जिले की जो बात करा, तो चूरू जिले की अपनी सगली जगी मान लो जगी तहसील ही बंक मई देखो समाचार मिलन लग रहे हैं कि बिरखा ठीक होने लग रही है। कल भी आपने चूरू जिले के मई ने कई ठोड़ तो जोरदार बिरखा, रतनगढ़ और सरदार से मैं इली साइड में तो बहुत ही बढ़िया बिरखा हुई कल, और बिरखा को दौर है वो जारी है, और मानसून की जगी बिरखा है भाभी देखो आने में है,
3: आने में है।
4: तो अपना जगह किसान बहन भाई यही बिरखा होगी तो बैठे आपने अब की है के मान लो ज्यादा कोई इन्ना भी ना देखने की जरूरी को नहीं है, खेत जी आपनों तैयार करेड़ो है, बीज तैयार करके आपने घर ले आके मिल लेड़ो है, तो खेत के महीना आपने की है के अड़सूतियों कर देना ही चीज है,
3: कर देना चाहिए। एक सगा भी देखो के जी हाँ भी आपने क्षेत्र का मायना, आपने देखो क्षेत्र, आपने जलवायु, अपना वातावरण है, एक अंदर ही अगर कोई बीज अगर आपने तैयार करेड़ो है तो सबसे पहले भी को प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अपना क्षेत्र है जी हमारे अपने बाजरो है, अपने यहाँ हमारे क्षेत्र की माटी है, दोमट माटी है, बलुई माटी है, तो एक मायने देखो अगर अपने क्षेत्र को अगर कोई बीज तैयार करे हुए बाजरे को तो सबसे पहले भी को प्रयोग करना बहुत जरूरी
4: है। भाई अर्जुन भाई बात है ना, बात है बहुत ही ठावड़ी बताई है कि कोई भी चाहे फसल हो, चाहे कोई भी मान लियो फल हो, जे वो भी जगह वातावरण के मायने मान लियो अपने बाणो है, जगह जलवायु में बाणो है, जगह माटी के मायने अपन बाणो है, तो भी के अनुरूप होगो ने,
3: तो
4: मतलब भी को तापमान सहन करने वालों भी की माटी की जगह क्षमता है, भी के हिसाब में जो बीज होगो तो वो बढ़िया पनपेगो और भी अपन बढ़िया लाभ होगो, और जलवायु भी के मुताबिक होगी तो जलवायु को भी पर सर्दी गर्मी है अभी को की है असर कम होगा,
3: असर कम होगा।
4: तो बात नहीं थे आ कह रहे आगे भैया ठेको है, तो मोटा मोटी की है अपना जगह किसान बहन भाई ही जी आप बात करा बाजरी की तो

0: बाजरी के महीने तो जब मतलब खेत के महीने बाजरो पके ना खेत में, जब मान लियो आप देसी बाजरो बैठ हो अपने खेत में और वो एकदम पक जाए, जब अपना मान लियो बुढ़िया देखो आप देखता ने अपना जगह माई था अपना मान लियो पिताजी मान लियो दादू जी मान लियो जगह भी वे खेत में सिट्टा तोड़िया करता। तो सिट्टा तोड़ता जोड़ी हूँ सिट्टा तोड़ता ने वह क्या करता जी मान लियो बढ़िया एकदम लंबो सिट्टो और भरपूर दाने पर दानो चढ़ेड़ो सो या मोटे दाने को बढ़िया सिट्टो पाकेड़ो तो ने बी सिट्टे ने की है कि भाई डंठल सिती काट लेता
1: डंठल सत्ती नाके धर लेता
0: हाँ काट की जोड़ी में टांग लेता एक नाके बादम बाने नाके नाके
1: छांट
0: और
1: लेता
0: छांट की बेला कर
1: बेला
0: लेता
1: कर लेता।
0: यहाँ करके वह मान लियो जितो बीज की जरूरी होती कि भाई अपने 10 किलो बाजरे को बीज चाहिए या 15 किलो चाहिए या मान लियो अपन 15 चाहिए और अपन मान लियो 30 कर लियो तो उसके और कोई अपना जगह
1: देने काम आवे।
0: देने भी काम आवे। तो ई हिसाब में सिट्टा टाल की और बढ़िया टालवा बीज है वो रखा करता
1: रखा करता
0: और वो बता
1: वो बाता
0: हाँ
1: भी कमान ओ फायदो जतो कजिया मान लियो कई बार अपन यहाँ देखता कि अब सिट्टा साप्ता है साप्ता रखता पा तो भी ओ फायदो जतो एक तो वो देखो कि बिकमाए ने अगर सिट्टा बादरो पड़े तो वो खराब होने तो
0: हाँ
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: बादरो
0: बिल्कुल
1: अगर अपा जिया मान लियो काट के अगर नाके भी रखा तो भी कमाए ने यहाँ मान लियो कोई लट इली खपरी लागने संभावना रहे।
0: हाँ
1: और बाजरा को जब भी सिट्टो अगर आपा साग रखा तो भी कमाए ने अगर यहाँ मान लियो कोई कट्टा मंगा लिया अगर झूफड़े में भी टांग दियो ना आपा तो वो सुरक्षित रहे वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई कहने को मतलब के फली के महीने जो अनाज हुए ने वो
1: हाँ
0: तावड़ो खराब को नहीं हुए
1: खराब को नहीं
0: है
1: हुआ।
0: भी सिट्टे के महीने जो धान है और बस सिट्टा देखो आप जो मान लियो के आप नहीं लाग तो भाई अब बिरखा होने को बगत है और बी टेम आप बस सिट्टा मु बाजरो भी टेम ही काटा
1: वे
0: करता
1: टाइम
0: बराबर
1: काटा करता
0: है
1: या 5-10 दिन आ खाती के कने काट देता भाई का बीज
0: हाँ
1: तैयार कर लिया अपना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो की है कि बहुत कम जगह किसान बहन भाई ये नीति ने अपना रखी है। बाकी की है कि आज की आप बात बताए आज ज्यादातर की है कि जो आप देसी बाजरो है ना
1: हाँ
0: बी बाजरे के महीने जो की देसी किस्म को आप जो बाजरो है बी के महीने मान लो ज्यादा करा करता। आजकल तो की है कि जी मान लो अब हाइब्रिड जो बाजरो वाला क्यों ने बी में की है कि यहाँ करेंगे नहीं किसान बहन भाई और भी को उसके कोई उपज पर भी असर अलग पड़ता हो
1: भी यहाँ है
0: गयो।
1: का जो आपा बावा कई किसान करने के पानी को साधन है तो वो तो देखो के वो तो बढ़िया से बढ़िया के हाइब्रिड को वासी या अलग के हटके वासी के आपने के पानी को साधन है तो वो भी के हिसाब से बादर वासी। जब कई किसान है जो हमारे कई क्षेत्र बिरानी है तो वो बिरानी के हिसाब से वासी। जब कहो या मान लो सिंचित अगर एरियो है आपने कुछ किसान यहाँ के मार्केट ट्यूबवेल को साधन है या अपने कोई तारानगर वाली सिंचाई को साधन है नहर को साधन है तो वो भी हिसाब से ही बीज वासी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बात भी आपनी बाजरे पर चाल ही पड़ी। तो आज अपना किसान बहन भाई वो बाजरे पर ही बतलावन कर सके बाजरो है ने मोटी जी बात करा आपने जी राजस्थान प्रदेश की बात करा तो अर्जुन भाई अठे की है कि आपनों तो राजस्थान को तो पूरा खाद्यान्न बाजरो है
1: बादरो है।
0: और बाजरो की है कि खाने के मायने बहुत ही शानदार हुए हैं
1: हाँ साहब
0: क्योंकि प्रकृति के मुताबिक है वो। क्योंकि आपनों अठे को जो राजस्थान प्रदेश को जो तापमान है अठे की मान लो जलवायु है अठे को जो मौसम है बिके अनुरूप अठे बाजरो पनपे
1: पन पे
0: और वो बाजरो आपने यहाँ पनपे के भाई ज्यादातर जिसकी खेती है ना बाजरे की अर्जुन भाई वह है बरानी
1: बरानी
0: खेती
1: खेती है।
0: और आपने जिसकी बरसात है ना बरसात के ऊपर आधारित है वह आपनी खेती है। और आपा जी बात कराने तो आपने भारत देश के मायने मान लियो जो को बाजरे को जो को क्षेत्र है ना बुआई को वो 95% असिंचित है बिरानी है
1: बिरानी है
0: ज्यादा आपने बिरानी बाजरो ही भाव है। और आपनो मान लियो देश है जो दुनिया का मायने पूरे मान लियो जो की दुनिया है पूरी पूरा विश्व है बी के मायने बाजरो मतलब पैदा करने वालों आपनो भारत देश अग्रणी है यानी सौ ज्यादा बाजरो है वो
1: भारत ही पैदा
0: भारत
1: करे।
0: ही पैदा करे। और अठे मान लियो आप भारत की जो बात करा तो 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मायने आपने बाजरे की खेती है अर्जुन भाई करीजा है।
1: करीजा है
0: और एक महीने जो मान लियो के जबकि 87% खेती है ना आपने भारत देश में जबकि का महीने मान लियो पहले नंबर पर तो राजस्थान ही है भी बाद महाराष्ट्र गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य है अंक महीने अपन नाम लिया ही है राज्य का अंक महीने बाजरे की 87% जिसकी खेती है वह अंक महीने हुए।
1: हाँ कमाइन हो
0: हाँ और बाजरे में जे अपा इकी मान लियो बढ़िया इकी पोषण की जे बात कराने तो बाजरे का जगह दाना ही ने बाजरे का दाना अंक महीने की है कि प्रोटीन है ने वो 10.5% लेगी और 14-14.5% तानी प्रोटीन हुए। वसा की जे हम बात करा तो अपा 4-8% तानी वसा हुए फिर भी हम कार्बन

0: कैल्शियम है, कैरोटीन है, विटामिन B2 भी कमाइन होए, और जो एक वो नाइसिन होए, जो विटामिन B6 भी बहुत मात्रा का मायने, मान लियो बाजरे का मायने मिले है। और जिया मान लियो आजकल तो कि आप पहले तो बाजरो ही खाता है, और अब जिया मान लियो गेहूं को थोड़ा चलन बढ़ी, अरबी के सागे सागे जहाँ चावल भी आजकल मान लियो आपने तो राजस्थान में कम खाए जा रहे हैं भाई, कि कई राज्य हम चावल ज्यादा खाए जाए, पर गेहूं और चावल है ना बिकी बजाय मान लियो बाजरो है ना बिक मायने जो लो तत्व है ना वो बहुत ज्यादा हुए।
1: बहुत ज्यादा भाई कमांडे को
0: हाँ
1: कह दिया भाई के अपना बुढ़िया मायत कहता कई मोटो खाओ और मोटो पेरो। अगर
0: बिल्कुल
1: आपा जिया मान लो बाजरो आपने पर नहीं आपने पशुधन है ना एक ऊपर भी बहुत जरूरी है कि अंक ने पोषक तत्व है अंक मायने भी तो आपना जो कई पशु पशुधन है कई बार आपा देखा का प्रोटीन की कमी कार्बन की कमी होगी वसा की कमी होगी। अगर आपा आजिया आपा प्रयोग करा भी हिसाब से अगर पशुधन ने भी अगर आपा बढ़िया गालन देवा बढ़िया बाजरो देवा या बाजरे की छानी करके करा तो वो भी एक पशु के लिए बहुत बढ़िया आहार बन जाए
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: भाई
1: हर
0: बिल्कुल
1: प्रकार के आप देखा कि गेहूं गवा तो गेवा के गला तो भी कमाने भी देखो तो यूरिया हुआ आपनों जो को ऐसी चीज साधन है जो वर्षा पर आधारित है। अगर आप आंकी अगर छानी भी अगर बाजरे के बढ़िया पशु निकाल से तो वो तैयार बहुत बढ़िया हो सी।
0: भाई देखो बाजरो है ना, बाजरो आसानी होने वाली फसल है, और चौमासे का महीना मान लियो, अब जहाँ मान लियो मई बरसे ने बिक महीने तो आप देखा के बाजरे को बीज ले ली साल को भी कटे पड़ेड़ो है वो उग गया अरे 8-8, 10-10 फुटा लंबो बज्जे
1: बच
0: है।
1: जैसा
0: तो कहने को मतलब वो है कि बाजरे की खेती है बा आसानी हो अपना घोस के आराम हूँ, और एक महीने जी मान लियो आप बात नहीं करा के जी माटी की जलवायु की जी बात करा तो ज्यादातर बाजरों की है कि जी मान लियो एक तो मोटी बात है कि बाजरे में जल भराव नहीं होना चाहिए
1: बस।
0: भाई, जिते पानी भिड़ो है ना वो है टाइम तक पानी भिड़ो रहे वो की है कि बाजरे के लिए नुकसानदायक हुए। मतलब बाजरों आपा जिते बावा ने बैठे भी कमाई ने मान लियो पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी रुक के बैठे की है कि जड़ गलन होगी बाजरो खराब हो जाए,
1: खराब हो
0: बाजरे
1: जाए।
0: ने बिया भी की है कि अर्जुन भाई ज्यादा पानी की जरूरी क्यों नहीं हो। देखा अब जिया मान लियो आपने कई थोड़े बिरखा जोर की हुई अब के कई किसान बहन भाई दो दो बर्बाद यार कई तीसरा भी बाने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों के वो उगतो ना जो उगतो छोटो छोटो बाजरो भी गोबर की मान लियो रेत फिर गई कई जगह तो उगे हो नहीं। तो कई बार यहाँ को भी हो जाए बाजरो की होगा जू ही आप बाने बाने के मान लियो कम कम मान लियो 10 दिन तक जो बाजरे पर बिरखा नहीं हुए ना, जब मान लियो आपने बिरखा होगी बढ़िया आप बाजरो वादियों और भी के बाद में 10 दिन तक बाजरे पर बिरखा नहीं हुआ अंधी उल्टो नहीं चले तो बाजरो बहुत जोर को लग गए
1: जोर
0: बीमा
1: को
0: जी,
1: लगे
0: क्योंकि बाजरे ने जी गर्मी चाहिए ना बहुत जरूरी है। और बाजरे की आप मट्टी की जी बात कर रहा तो
1: देखो कि बाजरे के माने इक माने को आ को जरूरी को नहीं का अपनी माटी की अपनी जिकी मर्दा है खेत की मर्दा है जे मान लो बालू माटी है या दोमट मिट्टी
0: हाँ हाँ
1: या मुर्दा है
0: बिल्कुल
1: तो बिन अगर आपा शुरुआती के मायने अगर तैयार करे रखा जे मान लो कोई खाद घरा तैयार करे रही अगर बा कर दी पाड़ कर दी बोझा भर एकदम बढ़िया तैयार करे रही अगर जमीन हो बोझा काटे एकदम बढ़िया तो जी मान लो अगर बढ़िया बरसात होगी पहली बरसात होगी जे मान लो जेठ जेठ आधा जेठ में हो गया जेठ लागते होगी भी टाइम अगर आपा बाजरो गेरा तो बा बाजरे की डाली हमेशा लागे
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: बुढ़िया आई कह रहा है कि जेठ की बाजरी है ना बहुत जोर की पनपे क्योंकि
0: हाँ
1: बी टाइम यहाँ को तावड़ो पड़े और बरसात की ओढ़ियो है ना तो जमीन का मान की उर्वरक शक्ति है ना वह निकले तो भाई बाजरे के ऊपर बात देखो कि बहुत प्रभाव पड़े देखो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सांतरी बात है बा अर्जुन भाई थे बताई है। और जे आपा की फसल पद्धतियां की बात करा मैं बाजरे की तो एक महीने की है कि जी मान लो बाजरे की जो की फसल है आजकल तो की है कि अपना जो किसान बहन भाई ने वे कह रहे हैं जी मान लो काम की सोराई के लिए जी बाजरो अलग बायो मूंग अलग बाया मोठ अलग बाया
1: अलग
0: ये
1: अलग
0: सारी
1: हाँ
0: फसलां अलग अलग क्यारी के रूप में बोला गया, क्योंकि आजकल जोत भी छोटी होगी। अब जी मान लो कोई 5 बीघा खेत है तो 1 बीघा में की बारे अलग अलग
1: अलग
0: बायो,
1: अलग बारे
0: तो
1: वो
0: पहली की है अपनी जो की मिश्रित जो की खेती
1: खेती
0: है
1: हाँ
0: वह पद्धति है वह अपनाता तो बीम के होते गए बाजरो और गुआर मिला की गेता, और बाजरे में कई किसान बहन भाई बाजरो मूंग भी बाता और कई मान लो कई जहाँ आपने अलग अलग
1: चूड़ा अलग
0: सीजन
1: है
0: कई जगह बाए जाए बटे बाजरे में अरहर भी मिलावे,
1: अरे
0: और कई जगह मान लो दूसरे जगह प्रदेश ही राजस्थान की बात अलग करा तो बटे जहाँ मान लियो बाजरे में लोबिया भी मिला के बावे आपने बाजरे में कई किसान बहन भाई सागे मोठ भी बावे। तो एज की फसल पद्धति ने आऊं क्यों है के जहाँ मान लियो दलन की जगी सागे जड़ो है ने ब्यू आपने जगी माटी की उर्वरता है ने यानी जो को उपजाऊपन है
1: उदाहरण हाँ
0: बीक के महीने की है के अर्जुन भाई सुधार होए, और एज की दाल वाली जगी हो

0: और यूं के है कि आप मान लो मिलुआ फसल हो ने, कई बार के हो कई फसल के फाल कुनिया हो, कई के कोई सो रोग आ जाए,
1: रोग आ जा,
0: तो किसान का फायदा हो जाए मिलुआ खेती के
1: भाई। मिश्रित खेती करनी है देवा भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि अपा यहाँ देखा के जमानो का रुख होगा, जमानो अगर कई बार लागे तो सगड़े लाग जा, नहीं का एक का मायने रह जाए, तो मिश्रित खेती का मायने अपना वो फायदा हो जाए कि जब मान लो मूंग मोट बाजरो गुआर तिल जो भी मिला के गिरेड़ है, जखो रुख हो जमानो को तो बात हो देखो पनपेगी पनपेगी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। साग अगर दूसरी फसल भी है देखो को भाई थोड़ा पानी का मायने अगर बरसात कम भी हुई तो अब बाजरी होती गुआर होती मोट होती, तो अगर अपा सिंगल खेती करेंगा तो भी को अपन देखो नुकसान आर्थिक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपनो बीज बाड़ो जो भी है वो लागो, लेकिन अपा भी कमान एक ही अगर भी बीज बाड़े का मायने अगर अपा मिश्रित कर लेवा तो आप ये मान लो के लगे टगे मान लो के आपने फसल कोई कोई अपने हाथ में आवेगी जरूर।
0: बिल्कुल अर्जुन भाई, एक बात रिया है कि एक आपने की है कि फसल जब भी आप वहां खेती कराने तो खेती के मायने आपने फसल चक्कर अपनाना है वो
1: बहुत जरूरी है। हाँ।
0: क्योंकि फसल चक्कर अपनावांगा ने भी आपनी जमीन की उर्वरता सही रहेगी, दूसरी बात जगह खरपतवार बात बात का हमें बांक मायने भी कमी आवेगी,
1: कमी आवेगी,
0: और जगह जड़ों संबंधित जगह रोग हो फसल वे रोग भी की है कम होगा,
1: कम होगा,
0: तो आपने फसल ही ने वे बदल बदल की बोनी चाहिए। मान लो अब के आप बाजरो भाई ने तो अगली बार भी की जगह मान लो गुआर बाद मूंग बाद मोट
1: बाद
0: कहने को मतलब एक बार जहाँ बाजरे की जड़ क्या होएगा अर्जुन भाई, बाजरे की जड़ होए अधर ऊंची रहे
1: ऊंची रहे,
0: और अब जहाँ गुआर भाई तो गुआर की जड़ तो जमीन का मायने एक फुट नीचे तक जाए
1: नीचे तक जाए। हाँ।
0: तो मान लो जब आप ऊपर ली एक बार ऊपर की जगह फसल भाई ने जहाँ मान लो बाजरे की जड़ा ऊपर ही रहे ज्यादा नीचे गुंजा बिलान एक बिलान को झुंडो ही हो, तो भाई ऊपर ऊपरों की एक पोषक तत्व ही वे खेच
1: ले,
0: ठीक है। अगली बार जो आप भी कमाईने जाए मान लो गुआर बायो या मूंग बाया या मोट बाया तो बाकी जड़ा की जमीन में गहरे तक जाए तो भाई ऊपर भी मान लो पोषक तत्व
1: मिले
0: जमीन के नीचे जगह ही ने
1: भी मिल
0: जाए नीचे जा रहे हैं बामू भी मान लो बिलान तक ही रहे वह ले लें। और दूसरी बात की है कि जकी दलन की जकी जड़ हुआ है अर्जुन भाई जो मान लो मूंग है गुआर है मोट है आंकी जड़ा में गांठ सी दिखे अपन
1: गांठ सी दिखा,
0: हाँ, तो बह के है जमीन को जो उपजाऊपन है ना बिना भी बढ़िया बनावे तो अपन की है फसल चक्कर है वो अपनानो जरूरी है। तो भी के लिए की है बाजरो हो चाहे अगली फसल है वह भी बढ़िया होगी तो फसल चक्कर अपन अपनानो जरूरी है। जी बाजरे की आप उन्नत किस्म की जो बात करा अर्जुन भाई तो एक महीने मान लो आपने राजस्थान प्रदेश की जो बात करा तो अठे मान लो RHB 121 बढ़िया किस्म है,
1: दूसरी किस्म है RHB 154
0: अभी बहुत बढ़िया
1: किस्म बहुत बढ़िया है।
0: एक बाद में जो बात करा तो एक CZP किस्म है 98.02 तो अभी देखो बाजरे की आपने होने वाली शानदार फसल है और आपने राजस्थान प्रदेश में सगले आप भाई जा सके।
1: और एक साथ देखो एक राज भी है
0: 171
1: हाँ 171 है अभी बहुत बढ़िया है, मतलब आप अलग टगे मान लो के आपने देखो क्षेत्र का मायने ने ज्यादातर किसान राज को प्रयोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल है, राज 171 बढ़िया है, एक साथ मान लो WCC 75 है अभी बढ़िया है, पूसा 443 है अभी आपने मान लो बाय जा है, और एक RHB 58 RHB 30 और RHB 90 एज की तीनों किस्म ही ए भी की है उपयुक्त ही, तो ए किस्म ही आ किस्म मुँह की है अपना जगह किसान बहन भाई ही बाको चयन कर सके हैं और बढ़िया आमु जबकि भी बने यहाँ पसंद आए कि भैया ठीक है बा किस्म है बा अपना आसकर बाकी तो की है जहाँ मान लो आपनो जहाँ कृषि महकमो है तो बंक ने भी आप पूछ कहा आपने मान लो सारे जगह कृषि विज्ञान केंद्र बनेड़ा ही भट्टे भी की है के बाजरे को और जो की अपनी दरली फसल को बीज की है तैयार भी करे जाए अर्जुन
1: तैयार भी करे जाए।
0: तो जी मान लो अब आपने मान लो आप माना के भाई आपने सारे जहाँ फतेहपुर कृषि विज्ञान केंद्र है या सरदार शेर कृषि विज्ञान केंद्र है जटे भी मान लो बीज जो तैयार करेड़ो है ना लोकल के मायने आपनो हटे को तो ये क्षेत्र के मायने अपन वणो है अपने क्षेत्र में तो वो भी देखो बहुत ही उपयुक्त रहे तो वो अपन की है
1: बाणोची। और एक साथ देखो के अगर अपा जद भी खेती बाड़ी बावा तो आपने जकी भी मृदा है अपने खेत की माटी भी की जांच करवानी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आ भाई बहुत ही जोरदार बात थी बताई के खेत जोतना पहली आप चाहे खेत में चाहे सिंचित खेती करो चाहे
1: ऐसी खेती करो
0: चाहे सिंचाई वाली खेती करो चाहे बिरानी खेती करो, है
1: माटी की जांच करनी,
0: माटी की जांच बहुत जरूरी है। और जगह सिंचित ट्यूबवेल है तो पानी की जांच भी करानी चाहिए,
1: बहुत जरूरी है।
0: पानी के मायने कौन कौन सी फसल उसके हैं, और माटी की जांच करा लेंगे तो भी मायने मान लो आपने खेत की जगह

0: 40 है, बी कमाई ने मान लो कौन सा पोषक
1: तत्व है कम है, कौन सा ज्यादा है,
0: कौन सा ज्यादा ही, तो बी कमाई ने जिया मान लो आप ने जिया मान लो वह पोषक तत्व ही बम कौन सी फसल हो सके, तो वह अनुशंसा भी किए गए बीमा आपने कर सके। और खेत की जगह तैयारी की बात करें तो गर्मियों में देखो एक बात है कि गहरी जुताई करनी बहुत जरूरी
1: है, जरूरी है।
0: और खेत ने भी बढ़िया एकदम साफ सुथरा समतल रखना चाहिए, गोबर की खाद आपने बढ़िया की है खेत कमाई देनी चाहिए। और बाजरे की जो आप अच्छी उपज लेना चाहवाने तो बी के लिए एक जुताई है ना आपा ने की है कि मिट्टी पलटन वालों है जो की ऊपर की माटी नीचे चली जाए नीचे की ऊपर आ जा
1: डिस्क
0: तो, हाँ तो भी मिट्टी पलटन वाला है मान लो एक जुताई है बापा ने जरूर करनी चाहिए। और बुआई को तो बगत आ रही है भाई, बुआई तो आपने जी मान लो ज्यादातर बाजरे की है अर्जुन भाई बिरानी खेती है और बिरानी में जिया ही मैं बरस जाए ना मानसून की बरसात हो चाहे मानसून पूर्व की बरसात
1: हो
0: बरसात आपने हो जा तो आपने देखो मान लो खेती बाड़ी है वा आपनी बाजरे की बुआई है वा कर देनी चाहिए। और कई किसान बहन भाई कह रहे हैं अर्जुन भाई कई बार क्या हुआ के पौध तैयार करके भी बाजरू बवे है तो भी की मान लो भाई जो मान लो 500 वर्ग मीटर में या जिया भी पर्याप्त है भी हिसाब मान लियो पौध है बाजरे की तैयार करके आप और जू ही पौध मान लो 20-21 दिन की हो जा अभी बड़ी बड़ी हो जा बी के बाद में जू ही बरसात हो जा तो बरसात होने के बाद में आप अभी खेत के महीने लगा
1: सका
0: तो ओके है जी मान लियो आपने जो की पौध है ना बाजरे की तो बिन आप मान लो जो बढ़िया बरसात होगी तो बी बाद में लगावा ने बी के लगाना क्यों होगा जिकी आप बाजरे की पौध लगावा ने बा जिकी पौध लगाएड़ी जिकी फसल हो जल्दी ग्रोथ करे और जो बी के ऊपर एक तापमान जी मान लो गर्मी को असर भी नहीं होगा क्योंकि बिन आप पहले तैयार कर ली
1: बड्डी
0: होगी और खेत में जो ही लगाई ना जब आप बड्डी है तो भी पर कोई तापमान को गर्मी को और को भी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव है वो
1: और
0: कीट जगह लागे बांगे लिए भी आपने कीट प्रबंधन भी करना चाहिए। अगर आपने मान लियो बी के बाद में खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी है खरपतवार जो प्रबंधन है ना अर्जुन भाई वो जो ही फसल है ना 20 दिन की हो जाए या 20-30 दिन की हो जाए कई बार क्या है कि मान लियो फसल को मेल बढ़िया रहने जब तो की है कि 20 दिन बाद में ही फसल इतनी जोरदार हो जाएगा भाग तो निनाड कर लियो जी
1: कर लियो
0: कई बार की है कि थोड़ा बहुत मौसम की और की चपेट लग गया तो महीने भर के महीने मान लियो वाह फसल है वाह अपनी खरपतवार नियंत्रण के रूप में तैयार हो जाए तो खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। कीट प्रबंधन में जहाँ ज्यादातर दिमक को प्रकोप हो है, एक तना मक्खी लगे और सफेद लट को भी जहाँ प्रकोप हो है, तो आंको भी की है कि आपने मान लियो बाजरे की जिकी अपनी फसल ही बांक मायने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अर्जुन भाई बातड़ी आप मन लगे बोली लंबी कर ली क्योंकि कई देर होगी आपने अपना जगह मान लियो कि तुला किसान बहन भाई ने वे भी मनोरंजन की उड़ीक कर रहे हैं तो एक कोई भजन है सांतरो सो आपा मन सुना दिया
1: सुनाओ सा
0: तो आपने कने आज एक सांतरो सो भजन है मोहन राम चौधरी साथी की आवाज में गायड़ो तो वो आपा भी सुना रहा अपना किसान बहन भाई भी सुने तो
1: सुनाओ सा।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: तो किसान बहन भाई, आप भी हो शांत रहो, संदेश सुनियो। और संदेश पहली अपा के अर्जुन भाई, एक शांत रहो, लोक भजन सुनियो, के जाग्यो बैराग मोहन राम चौधरी सत्य की आवाज में, जरूर अपना जगह इतुला किसान बहन भाई मग दाए उसी। और बतलावन करना तो मन और भी घणो ही करने लग रही अर्जुन भाई, पण की है के भगत के बंदेड़ा हां है, तो भगत के सगे ही मान लियो अपने काम धाम करनो पड़े है। और चलता चलता अपने किसान बहन भाई ने एक सांतरी सी बात आ बता दें कि आपा की अपनी परंपरागत की खेती करा ने बिके सगे, अब आपा ने की है के चौमासे के महीने पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए, तो छायादार पेड़ पौधा भी लगा सका, बांके सगे की हुए के
2: फलदार
1: भी लगा सका
2: लगा सका।
1: तो आपा ने थोड़ो बहुत की है के बागवानी की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और आपने क्षेत्र में जहाँ नींबू है, आंवला है, संतरा है, ए जगह लगे हैं खूब, तो यहाँ की खेती है अपा कर सका, थोड़ा सा रकबे में कर सका, आप आधी बीघा में कर सका, हाँ एक बीघा में कर सका, हाँ प्रयोग के रूप में कर सका, हाँ तो अपा ने करनी चाहिए, क्योंकि की है कि एक तरह नकदी फसल ही, और एक बार जब आप लगा लिया तो अपा ने फिर लंबे टाइम तक मुनाफो देती रहे। तो भाई कार्यक्रम को भगत है वो पूरा होना है, तो और मिलने तानी अब अपा ने अपना किसान बहन भाई वो सीख लेनी पड़ी। तो आज के कार्यक्रम में लेवा सीख और करा
2: राम राम।
3: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसानवाणी, FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा की गाई ये लोक रचना।

संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं गुलदस्ता। फिल्म संगीत की आगाज करते हैं वतन के रखवाले इस गीत के साथ, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल की आवाज में। शब्द लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में सूर्या फिल्म के इस गीत को। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है संतोष आनंद।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में चालबाज फिल्म के इस गीत को। शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा।

हर घर हर दिल तक, कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में तेरी मेहरबानियाँ फिल्म के इस गीत को। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है SS बिहारी की।

गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज, और फिल्म का नाम है रामावतार। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

राधा का संगम फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है अनु मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म के इस गीत को मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में गुलदस्ता। रात्रि के 8:45 होने को है। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेस ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने

0: काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: आश्रय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हारमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SI.

FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार हैं अलाउद्दीन लंगा और साथी।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। कलाकार थे अलाउद्दीन लंगा एंड साथी। FM 107 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं

0: आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
1: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन से, हर हाथ में देखिए स्मार्टफोन है और हर बच्चा, हर इंसान एक स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है, 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूँ कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर्स थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
0: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए, हमने एक यूपीआई

0: सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की विश्व की सब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाते। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए। तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना चाहिए ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े और हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है
0: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 रुपए से चालू किया था, आप 1,00,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फाइनेंस दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर जहाँ R&D डिजाइन यहीं होते हैं, आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया एआई मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए उनका डिफाइन करिए। ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा एआई की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन 3 देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, और 2015 में 81वें थे। अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है, हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: कंट्री वाइड।

FM 102.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये रात फिर ना आएगी फिल्म के इस गीत को।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में गाए बावर्ची फिल्म के गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजने को हमसे कुछ देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के

0: सुरक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president